सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगादि सच खैति सच नानक खुशी पी सच

खड़ा न आप मुहाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों आप सरवण कर रहे से

ठाकुर प्रभु तुम्हारी शिष्य राखो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार वाहे गुरु साहिब जी।

चलनी गिने मिथे सवास तेरे कोल ने साह लिखे है, दिन मुकरर है ते फिर रोज रोज ओ सवास घट रहे ने, दिन घट रहे ने जां दिन वध रहे ने, आप ही अंदाजा लो। इहदा मतलब असीं पैरो पैर मौत वल नूं वध के जा रहे हैं। तो यही गल अपने आप नूं समझाउण दा यतन करना है। ताई भगत जी उचेचा जोर दे के कह रहे ने जिंदू को समझाए। कबीर साहब की रचना दे द्वारा एक होर बचन बख्शिया होया मेरे सामने आंदा है। कबीर साहब जी कहिंदे ने दिन ते पहर, पहर ते घरियां, आव कटै, आव मैंने उम्र कटे, मैंने घट रही है, आव कटै तन छिजै। छिजै दा मतलब कमजोर होना। कहन लगे तन पैरो पैर हर रोज छिजदा कमजोर हुंदा नजर पै रहा है, उमर घटदी नजर पै रही है, दिना सालां कड़ियां पैरां करके। आव कटै तन छिजै, काल एहेरी फिरै बदक ज्यों, बदक मैंने शिकारी, काल शिकारी बनके ना तेरे सिर दे उत्ते मंडरा रहा है। काल अहेरी फिरे बदक ज्यों, कहो कवन बिद की जय, सो दिन आवन लागा, ओ दिन नेड़े नेड़े आ रहा है, सो दिन आवन लागा, मात पिता पाई सुत बनिता, कहो को है कांका। कहन लगे ओ दिन नेड़े नेड़े आ रहा है। जिस पल दे अंदर साडा जन्म होया ओ पल सानू याद है, मिंटा सकेंटा दा लेखा जोखा हर बच्चे दा अजकल तैयार हुंदा है, इन्ने वज के इन्ने मिंट दे उत्ते बच्चे दा जन्म होया। ओ पैर केड़ा सी पैर दा पता है, पैर तो बाद ओ दिन केड़ा सी दिन दा पता है, दिन तो बाद ओ महीना केड़ा सी महीने दा पता है, महीने तो बाद ओ साल केड़ा सी साल दा पता है। अखीरी चलदियां चलदियां ओ साल आउणा है, जिस साल दे अंदर सानू इस खिड़ी गुलजार बहार नू छड़ के टहनी दे नालों टुटना पैना है, टहनी दे नालों चढ़ना पैना है, रुखसत होना पैना है, उस साल आउणा है। क्योंकि जो बनिया है उन्हें एक दिन टुटना जरूर है, जिस दी शुरुआत है उसका अंत अवच होना है। अगर परमात्मा वास्ते ए लफज कह सकने हां कि अंत विच नहीं, आउन जान दे चक्कर विच नहीं, ते ओ केवल रब है, परमात्मा है, बाकी सारे काल दे बंधन दे अंदर आपां बजे हां, असीं आए हां, जाना पैना है, बने हां, टुटने पैना है, साडी शुरुआत ते साडा अंत होना है। चलदियां चलदियां जिंदगी दे मोड़ दे अंदर एक इस तरह दा साल आउणा है जिहड़ा जिंदगी दा अखीरला साल होना है, उस तो बाद नवां साल साडे जीवन विच नहीं आउणा, लोकां दे जीवन विच आएगा, इक दे जीवन विच नहीं आउणा। उस साल दी कहानी खत्म हो जानी ते साल तो बाद फिर चलदियां चलदियां गल आ जानी है उस महीने दे उते, जिस महीने दे अंदर चलना पैना है, फिर महीना भी जांदा लगना है, फिर आ जाना है वो दिन, फिर आ जाना है वो पैर, फिर आ जानी है वो घड़ी, फिर आ जाना है वो पल, फिर वो छिण आ जाना है, जिस छिण दे अंदर सानू इस दुनिया नू छड़ के ते चलना ही पैना है। राजी होवांगे ना होवांगे, पर ये गल 100% सच है कि सानू चलना ते अवच पैना है। भगत जी कहन लगे सो दिन आवन लागा, मात पिता भाई सुत बनिता, बनिता मैंने घर वाली, सुत मैंने पुत्र, कहो को है कांका, वो दिन नेड़े नेड़े आ रहा है। तो खैर कहन लगे जिंद बहुटी मरण वर ले जासी परनाए। एक मैं होर बेनती आप संगत दे सन्मुख करदा चला, बहुता लम्मा समा नहीं, तुसी केवल एक मिंट दी साधना करो। मैं ए नहीं कह रहा एक दिन, एक महीना, एक साल, केवल एक मिंट, और इत्थे बैठे बैठे करके वेख लो, जिथे जिथे भी तुहाडा मन इस वक्त दौड़ रहा है, अपने मन नू इस केंद्र बिंदु दे उत्ते लिया के इकट्ठा करो कि मेरे कोल मौत ने एक दिन आना है ते मैनू मरना पैना है, मैनू ये शरीर छड़ना पैना है। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਓ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵੈਤ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਈਰਸ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੋ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ

शरण ठाकुर तब तुमरी, तिस राखो हो कृपा तार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो हो लाज मुरार। वाहे गुरु साहिब जीओ, किजना बुझे किजना सूझे,

एक वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पवित्र अते निगी गोद आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों मन बिरतियां एकागर करके बहन अते सुनन दी कृपालता करियो। आप सरवण करदे आ रहे हो रोज सवेर दे वकत भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों लड़ीवार विचार लड़ीवार कथा। अज जो श्लोक आप संगतां दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए, पहला श्लोक है फरीदा जे जाना तिल थोड़े सम्मल बुक भरे, कि जे मैं जानदा हुंदा कि तिल थोड़े ने ते जल्दी जल्दी बुक भर भर के दूसरे पासे रखन दे नाल सुटन दे नाल इन्होंने जल्दी खत्म हो जाना है, ते मैं बड़ा सोच विचार के संभल संभल के कदम पुटदा बुक भरदा ताकि मेरे भांडे विचों तिल मुक दे ना। हकीकत यह है फरीद जी जिधर इशारा कर रहे ने कि मनुख नू जदों अपने सवासां दी कीमत समझ विच आउंदी है कि मेरे सवास अमोलक ने, ते जिहड़े सवास इह अज तों पहिलां लै चुका है जिन्ने सवास गुजार चुका है उन्हां पिछलियां बीतियां होयां सवासां दे अंदर इह वेखदा है कि मैं कमाया की ते गवाया की, ते नजर इह आउंदा है कि गवाया सब कुछ है ते कमाया कुछ भी नहीं। समझ ये आउंदी है कि सवास गवाई गवाए ने, इन्हां सवासां दे नाल मैं कोई चंगा वणज वपार कीता हुंदा, रब जी दे गुणां दा संग्रह कीता हुंदा, वाहिगुरु मंत्र दा जाप कीता हुंदा, ये कुछ ते नजर आ नहीं रहा, ते सवास सारे गवाए हुए गुम हुए राख दे ढेर दे अंदर पाए हुए नजर पै रहे। पिछले बीते समय दे उत्ते तौबा कर रहे ने, उपदेश

खरीद के लियो ते तुहाडी मर्जी भावे अति मिठा पदार्थ बाजार दे अंदर जाके खरीद के लियो। एको ही मार्केट दे अंदर जान लेवा पदार्थ मिलदे ने ते जान देवा पदार्थ मिलदे ने। जो तंदुरुस्ती देन वाले ने पदार्थ ओ चीजा वस्ता मिल जांदियां ने बाजार विचों ते जो रोगी बनाउन वालियां ने चीजा वस्तुआं ओ भी मिल जांदियां ने बाजार विचों। शहद खरीद के लियाना है, मिश्री खरीद के लियानी है, कोई होर मिठास खरीद के लियानी है, तुहाडी मर्जी है, पैसा तुहाडा है, सोच तुहाडी है। अगर कौड़ा तुम्मा खरीद के लियाना है ते तां वी सोच तुहाडी है, पैसा भी तुहाडा, मर्जी तुहाडी है, क्योंकि सवासां दा सरमाया तुहानूं खुदावंद करीम परमात्मा ने दे दिता है। इस धन दे नाल खर्च करके तुसीं वैस्या द्वारे जा सकदे हो, पब्बां क्लबां दे अंदर धन नूं खर्च करके जा सकदे हो, इसी धन दे नाल जुवारी बन सकदे हो, इसी धन दे नाल अयाशी बदमाशी दे अड्डे कायम कर सकदे हो धन दे नाल, ते इसे ही धन दे नाल आपां गुरुद्वारे दे अंदर, मंदिर मस्जिद दे अंदर, धर्म स्थानां दे उत्ते लिया के इसे धन दे नाल लंगर भी चला सकने। इस धन नूं जो तुहाडी जेब दे अंदर है, तुहाडी मर्जी है, उन्हों सही पासे खर्चना है वह खर्चिया जाएगा, गलत पासे खर्चना है वह खर्चिया जाएगा। धन का तो कोई उजर मामला ही नहीं, धन का तो कोई अगों बोल बुलावा ही नहीं है कि तू मैनू खर्च करना चाहना है गुरुद्वारे दे अंदर ते मैं गुरुद्वारे विच खर्च होना नहीं, या धन ते कदी ये नहीं कहिंदा कि तू मैनू खर्च करना चाहना है पब दे अंदर ते मैं पब दे अंदर खर्च होना नहीं, तू अपना जोर ला ते मैं अपना जोर लाउना, धन ते इस तरह नहीं कहिंदा। धन कमाया होया आया तुहाडी जेब दे अंदर, हुण अगों तुहाडी सोच दे मुताबक उस धन ने वरतों विच आउणा है, उहनूं गलत पासे वरतो, उहनूं सही पासे वरतो, ये तुहाडी समझ है। मैं एक बेनती होर भी चलो करदा चलां, गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र बाणी दे अंदर एक अरदास करन दा बल, अरदास करन दा तरीका पातशाह ने साडी झोली दे अंदर पाया। कहन लगे सा मत दीजै दयाल प्रभ, हे मेरे मालक दया दे सागर सतगुरु जी, मैं तेरे दर दा जाचक, तेरे घर दा मंगता बन के मैं तेरे कोल आया, ते हुण जिहदे कोल हथ फैला के मंगो, अगला पुछदा है ना कि तेरी मंग की, कोई मंगता तुहाडा दरवाजा नौ करे, तुहाडी डोर खड़काए, तुसी पुछोगे ना तेरी मंग की, कपड़ा चाहिदा है, भोजन चाहिदा है, धन चाहिदा है, जुत्ती चाहिदी है, तेरी मंग की है, कोई मंगता आ जाए। हुण जद ए बोल बोले कि सा मत दीजे दयाल प्रभ, जे तुम्हें अरादा सतगुरु मैं अरदास लेके आया तेरे दर दे उते, ते जिहदे चरणा विच अरदास लेके गए उन्हें अगों पुछया आउण वालिया तेरी अरदास की है, तेरी मंग की है, ते आख्या सा मत, मत मैंने अकल, हे मेरे दयालु स्वामी जी, मेरी झोली दे अंदर ओ अकल पाओ, केड़ी अकल, जित तुम्हें अरादा, जेड़ी अकल दे नाल मैं तेरे नाल जुड़िया रवा, तेनू अरादा रवा। इत्थे मैं एक बेनती होर करदा चलां, साडे शरीर दे जिन्ने अंग ने ओ सारे साडे मन दे कह चलदे ने। मन कहिंदा है अखां नूं इधर वेखना है ते अखां उधर वेखदियां ने दूजे पासे नहीं, मन कहिंदा है अखां नूं उत्ते वेखना है ते अखां उत्ते वेखदियां ने थले नहीं वेखदियां, मन कहिंदा है हत्थां नूं कि इस तरह हिलना है ते हत्थ उस तरह ही हिलना शुरू कर देंदे ने, इशारा करना शुरू कर देंदे ने, जिस तरह मन दा विचार बनदा। आप पढ़े लिखे देश दे वासी हो, मेरी बेनती नूं समझण दा यतन करियो। मन कहिंदा है पैरां नूं इस मार्ग दे उत्ते चलना है, ते पैर अगों कोई उकती युक्ति अपील दलील बयान नहीं करदे, पैर उस मार्ग दे उत्ते तुरना शुरू कर देंदे ने। मन दा विचार बन जाए कि अज मैं पैरी चल के पब विच जाना है, ते पैर तुहाडे सारे शरीर नूं लैके पब तक पहुंचा देंगे। मन दा विचार बन जाए कि अज पब विच नहीं जाना, अज मैं मंदिर गुरुद्वारे विच जाना है, मस्जिद विच जाना है, ते तुहाडे दो पैर तुहाडे सारे शरीर दा वजन चुकदे चुकदे तुरदे तुरदे वो तुहानूं गुरुद्वारे लिया के खड़ा कर देंगे।

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पवित्र अते निकी गोदा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनो, आप रोज सवेर दे वकत सत्कार योग भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों, उन्हां दे सलोकां विचों कथा विचार सरवण करदे आ रहे हो। अज तुहाडे सामने तीन श्लोक भगत फरीद साहब जी दे पढ़ के सुनाए गए। पहला श्लोक, देख फरीदा जो थिया दाढ़ी होई पूर। कह लगे कि अपने जीवन दे अंदर ध्यान दे के वेख की होया नजर आ रहा है, जो थिया जो हो चुका है, जो बन चुकी है खेड, वो ए नजर आ रहा है कि दाढ़ी हुई पूर, तेरे दाढ़ी दे वाल रंग अपना बदल के सफेद हो गए ने। काली हूं हुण तौले आए, पवर गए बग बैठे आए, काले रंग जवानी दी निशानी वो चले गए, चिट्टा रंग बुढ़ापे दी निशानी वो आण के तेरे उत्ते बह गए। और नाल ही अगली पंक्ति विच कह रहे ने, अगों हुण नेड़ा आया। अगे नेड़ा केड़ा पासा आ रहा है, अगे मौत ते पिछा रहा दूर पिछे जन्म। मौत नेड़े नेड़े आउंदी नजर आ रही है ते जन्म दा दिन पिछे दूर रह चुका नजर आ रहा है। साढ़े जीवन दी सारी खेड जन्म ते मरण दे विचकार चल रही है। साड़ी शुरुआत जन्म तो होई, साडा अंत मौत ते जाके हुंदा उत्ते हुंदा है। जन्म दे नाल असी कुछ नहीं सी, मौत तो बाद कुछ बन सकन दी समर्था साडे विच नहीं है। जन्म ते मौत दा ए विचकारला समा, विचकारले समय दे अंदर ही असी अमीर हां, गरीब हां, बुरे

जानै सिरपी मिट्टी खाय। फरीदा मैं पुलावा पगदा मत मैली होए जाए। गैला रूह ना जानै सिरपी मिट्टी खाय। फरीदा शक्कर खंड नीवात गुड़

0: मिठिया रब ना पूजन तुद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद का आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, आप चल रही लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दे श्लोकां विचों सरवण करदे आ रहे हो। मन बिरतियां एकाग्र करो, इस श्लोक नूं आधार बना के कुछ समझन ते समझाउण दा यतन करिए। फरीद साहब जी दा फरमान फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली होए जाए। कहन लगे मनुख इस परम विच ते रहिंदा है कि बाहरों मेरे सिर दे उत्ते बजी हुई पग मैली ना होए। हकीकत है कि मनुख नूं जितनी खबर बाहर दी है उना ही अंदर दी तरफों अनजान है। बाहर दे बारे समझ आ गई है, अंदर दे बारे समझ नहीं आई। अगर आई है ते बहुत थोड़ी आई है। यही कारण है जिन्ना साफ सफाई का ध्यान बाहर है उन्नी सफाई का ध्यान अंदर नहीं है। तन साफ होना चाहिए सब की तमन्ना है, मन साफ होना चाहिए किसी विरले विरले की लोचा है, सब की तमन्ना यह नहीं है। उस तो बाद तन दे कपड़े घर बार मोटर कार हर जगह जो शरीर दे बैन उठन दे कम आउंदी है वो साफ सुथरी चाहिदी है। इते सब नूं पता है, पर जिथे दीन दयाल निरंकार नूं वसदा रसदा वेखना चाहुंदे आ मन साफ चाहिदा है। इह किसे विरले विरले नूं पता है, सब नूं नहीं पता। तो इस तरह कह लिए कि लोग बाहर मुखी जीवन गुजार रहे ने, अंतर मुखी जीवन नहीं गुजार रहे। जब भी कोई रब जी दे राह दे उते अपने कदम रख के चलना शुरू करता है उदा ध्यान बाहरों हट के अपने अंदर वल जाना शुरू होता है। तो जब ध्यान अंतर मुखी होता है समझ आउंदी है अंदर बहुत कूड़ा करकट मैल ही मैल पई है, तो अपनी मैल नूं वेख के बंदा आप ही बेचैन हो जांदा है कि इतनी सारी मैल, अपनी मैल नूं वेख के अपने आप तो आप ही नफरत कर बैठदा है। इतनी सारी मैल ते ओ भी मेरे अंदर, मैं ते समझदा सा नहीं है पर बहुत ज्यादी है, बहुत ज्यादी। तो खैर ईसाई जगत दे अंदर ईसाई जगत दे बानी हजरत ईशा जी उन्होंने रब तो बाद नंबर दो दे उते सफाई नूं ही दर्जा दिता है। हजरत ईशा जी क्या करदे सन कि परमात्मा तो बाद अगर कोई साडा करना कर्म धर्म फर्ज बनदा है तो ओ ए है कि बाहर भी सफाई होवे ते अंदर भी सफाई होवे। चलो अंदर दी सफाई दे संबंध विच हर पैगंबर ने, अवतारी तेरे परी पुरश ने जोरदार बचना विच किया है कि मन पवित्र चाहिए, साफ चाहिए। पर हजरत ईशा दी बाहर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने ते अंदर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने। जद तो मनुख ने होश संभाली है उदों तो लैके मैल अपने बाहर भी वेखदा आ रहा है ते मैल अपने अंदर भी वेखदा आ रहा है। ते फिर बाहर दी मैल दे संबंध विच इहदी कोई जानकारी है, इहनू कुछ ज्ञान है, बाहर दी मैल नूं धोण दे इह साधन लभदा रहा, साधना दी खोजबीन करदा रहा ते बाहर दी मैल नूं हटाउण दा यतन भी करदा रहा। ओ मैल चाहे तन दे उत्ते या फिर तन दे उत्ते पए होए कपड़िया दे उत्ते, उस मैल नूं धोण दे साधन जुटाउंदा रहा, साधन लभदा रहा। मैल हटाना इहदा लक्ष्य है। साधन बदलते रहे ने, हुण भी बदल रहे ने, बदलते रहेंगे। साधन दे नाल फर्क नहीं पैंदा। गल ते इह है कि अंदर मैल ना रहे, कपड़े दे उत्ते मैल ना रहे। एक बेनती मैं भी करदा चला, बाहर दी मैल जो साडे शरीर जां शरीर ते पाए हुए कपड़िया दे उत्ते या सज्जे खब्बे मैल दिसदी है, एक गर्दो गुबार मिट्टी घटे दे कारण है। बाहर दी मैल गर्दो गुबार मिट्टी दे कारण है, ते अंदर दी मैल बुरा वेखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, बुरा सोचना इस दे कारण है। जो अंदर मैल बनती है ओ बुरा वेखन बोलन सोचन करके बनती है। जो बार मैल बनती है वो मिट्टी कट्टा हनेरी तूफान गर्दो गुबार इहदे कारण मैल बनती है। बार दी मैल अंदर नहीं जाती है, और अंदर दी मैल ये साडे इंद्रियां दे राही बदल बदल के बार आउंदी रहिंदी है। तन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी की पवित्र बाणी है, कहन लगे भरिय हथ पैर तन देहे पानी तोते उतरस के है। ये बाहर दी मैल है। अगर हथ पैर भर जांदे ने तो पानी नू वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी, साबण नू वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी। भरिय हथ पैर तन देहे पानी तोते पानी दे नाल तो लो उतरस के है, लगी हुई मैल उतर जाएगी चली जाएगी। मूत पलीती कपड़ होए देसा गोन लई है ओ तोए, अगर कपड़े भी किधरे चिकड़ लवरेज हो गए ने ते कह लगे साबुन दी वरतों करन दे नाल ओ भी उजले हो जाएंगे साफ हो जाएंगे। पर किसी ने प्रश्न किया, साहब जी अंदर दी मैल नू धोण वास्ते केड़ी सरफ ते केड़ा साबण ते केड़ा पानी वरतों विच लियाईए मैल अंदर चली जाए, ते अंदर दी मैल नू बाहर कढ़ना होवे धोना होवे तो फिर प्रश्न साडा ए धुपेगी किवें। हजूर कहिंदे ने कि परिये मत पापा कै संग उह धोपै नावें कै रंग। गुरबाणी दे अंदर लफज जिहड़ा आया ना उह पाप आया है, अपराध नहीं आया। इस जगह दे उत्ते इस तरह नहीं है कि अपराध लफज आया नहीं है, पर इस जगह दे उत्ते कहन लगे परिये मत पापा कै संग, क्योंकि पाप बीज है ते अपराध उस बीज तो वधन फुलन वाला दिसन वाला बूटा है। पाप जड़ है ते उस पाप दी जड़ दे सहारे दे उत्ते जिहड़ा पनपन वाला है वह अपराध नाम का बूटा है। इस तरह कह लो पाप अंदर हुंदा है ते अपराध बाहर हुंदा है, भावे दोवें गुणा दोवें दोष दोवें तरह की मैल है, पर पाप मन दे नाल संबंध रखता है ते अपराध तन दे नाल संबंध रखता है। जो तुहाडे अंदर माड़ी सोच चल रही है बुरी सोच चल रही है, कामुक सोच क्रोध निंदा चुगली ईर्षा तरह तरह दियां बुरियां विचारां जो चल रही ने, उहदा नाम पाप है। उस पाप तो अगे आण के जिहड़े बुरे कर्म करने असीं शुरू कर देने आ उहदा नाम अपराध है। अपराध नूं डर हुंदा है हथ कड़ी दा कानून दा समाज दा, पर पाप नूं ते भी डर नहीं है, क्योंकि पाप तां किसी दी निगाह जांदी नहीं है। पाप ते किधरे मंदिर मस्जिद दे अंदर बह के भी कीता जा सकदा है। खिमा चाहवांगा की सोच रहे हो तुसीं इस वक्त मन दे अंदर, कोई दूसरा ते नहीं जानदा। बिल्कुल तुहाडी बगल दे अंदर तुहाडे नाल बैठा होया दूसरा प्रेमी दूजा सतसंगी नहीं जानदा तुहाडे मन दे अंदर की विचारां दी तारा चल रही है। पर तुहाडे तन नूं ते आपां वेख ही रहे हां, सारे एक दूजे नूं वेख ही रहे हो कि तन आराम पूर्वक बैठा है, मन भी बैठा है नहीं बैठा है ते तुहानूं पता है या सतगुरु नूं पता है। तो पाप ना कानून दी पकड़ विच आउंदा है ना समाज दी पकड़ विच आउंदा है, अगर आउंदा है ते धर्म दी पकड़ विच आउंदा है निरंकार दी पकड़ विच आउंदा है। निरंकार जानदे ने अंदरों असी मैले हां अंदरों असी पवित्र हां, निरंकार जानदे ने। दूसरे जो भी फैसला लेंदे ने ओह साडे बाहर मुखी जीवन नूं वेख के फैसला लेंदे ने। साडा बहना उठना चंगा है, तुरना फिरना चंगा है, बोल बाणी चंगी है, लोग कह देंदे ने गुरमुख है, पर मैं गुरमुख हाँ मनमुख हाँ यह मैनू खुद नू पता है ते या सतगुरु साहब जी नू पता है, गुरु ग्रंथ साहब जी नू पता है। खैर मैं एक बेनती करदा चला, डॉक्टर इकबाल तो इस तरह भी कहिंदे ने कि एक ही चेहरे पे हजार चेहरे बना लेते हैं लोग, यही चेहरा गुरुद्वारे दे अंदर कुछ होर दिसदा है, यही चेहरा दुकान दे उत्ते किसी होर रंग विच दिसदा है, यही चेहरा किधरे कारोबार दे अंदर होर रंग पकड़ के अपने उत्ते जमाया होया दिसदा है, यही चेहरा मां दे सामने हो रहे, पत्नी दे सामने हो रहे, धी दे सामने हो रहे, समाज दे सामने हो रहे ते गुरुद्वारे दे अंदर हो रहे। गिरकत अपने रंग बदलदा है, मनुख अपने चेहरे दे मखौटे बदलदा है, ते मखौटे बदलन दी इहनूं बड़ी चंगी तरह जांच है। मखौटे किवें बदलने ने, किधरे गमी वाली जगह ते चला गया है, किधरे अफसोस करन वास्ते किसे दे घर विच जाना पिया है, उत्थे कोई सोख समाचार है, इहदे अंदर भावें गमी नहीं पर चेहरे दे उत्ते बनावटी गमी दा मखौटा पाउणा इहनूं आउंदा है कि बनावटी गमी चेहरे दे उत्ते किवें लियाई दी। किधरे खुशी वाली जगह ते चला गया है, किसे दे व्याह दे अंदर, किसे दे बच्चे दे जन्मदिन दे अंदर, किसे दे कारोबार दी ओपनिंग दे अंदर चला गया है। अंदर पावे जैलसी है, अंदर पावे ईर्षा है, पर बनावटी खुशी दा मखौटा बना के उन्हां नूं बधाई देण दी इहनूं बड़ी चंगी तरह आदत ते कुशल है। ये जानदा है कि खुशी दा मखौटा कदों पाउणा है ते कमी दा मखौटा कदों पाउणा है। खैर मेरा विशा नहीं सी, अंदर जो बुराई है उहदा नाम पाप, जो बाहर बुराई प्रगट होके आ जाती है उहदा नाम अपराध। बस एक नुक्ता याद रखो, अपराध बाहर हुंदा है ते पाप हमेशा अंदर हुंदा है। हुण अपराध ताई बनदा है ना जे पाप अंदर होवे, ते जे पाप ही अंदर ना रहे ते अपराध नूं पनपण वास्ते समा मिलेगा ही नहीं, अपराध बनेगा कित्थे। अगर जमीन विच तुसी बीज अंबां दा बीजिया ही नहीं, अंब दी गुठली बीजी नहीं, ते अंब दा बूटा पैदा भी किवें होएगा। जमीन दे अंदर एक जिमीदार जिस तरह दी फसल दा बीज बीजदा है उस तरह दे ते बूटे पैदा हुंदे ने दूजे ते नहीं। अगर बीज ही नहीं तो फिर बूटा भी नहीं। पाप नहीं ते कहना पएगा दुनिया दे अंदर अपराध भी नहीं दिसेगा। तो गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी गल जड़ तो फड़दे ने मुढ तो, उपरों उपरों रुख दियां एक दो टहिणियां कट दईए उहदे नाल दुनिया दे अपराध पाप कतलो गारत गुंडागर्दी मिटने ते नहीं है। रुख दियां जड़ां अगर जमीन विच लगियां ने उपरों उपरों पत्ते झाड़ दिओ, पत्ते नवे आ जांदे ने, फुल तोड़ लैंदे हो फुल नवे आ जांदे ने, फल तोड़ के खा लैंदे हो फल फिर समा पा के नवे आ जांदे ने, टहिणियां नूं आप कट देंदे हो दो टहिणियां कट दे हो दो दूसरी शाखा दे उत्ते दूसरे टहिणे दे उत्ते नवीआं शाखावां जन्म लै लैंदियां, एक टहिणी नूं कट रहे हो दूजी नवी जन्म लै रही है। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि अजे जड़ मौजूद है। अगर जड़ ना रह गए तो ना रुख दे उत्ते पत्ते आउणगे, ना फुल आउणगे, ना फल आउणगे, ना दोबारा दोबारा हरियाली आएगी। तो गुरु नानक देव साहब जी गल जड़ तो आरंभ करते हैं, कहन लगे भरीए मत पापा कै संग, अंदर किवें भरदा है पाप दे नाल। कहन लगे भरीए मत पापा कै संग, हुण अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते ना ते कोई साबण ना कोई सरफ ना कोई होर लिक्विड ना कोई पानी नहीं धुपेगी। हुण मैल धुपेगी किवें? पुछिया हजूर फिरे मैल जावे किवें? कहन लगे ओह धुपै नामे कै रंग, धुप जाएगी मायूसी दी लोड़ नहीं है। पर जिस साबण या निर्मल जल नूं वरतों विच लियाउण तों बाद ओह मैल जाणी है उहदा नां है परमात्मा दे गुण परमात्मा दा चिंतन, ओह धुपै नामे कै रंग। एक बेनती मैं होर करदा चलां, सुखमणी साहब दी पाक बाणी नूं आप उचेचे तौर ते प्यार सहित पढ़दे जपदे सुणदे वेख्या जांदा है। सुखमणी साहब दे अंदर हजूर दा प्रमाण सोच करे दिनस अर रात, इहनूं लफ़ज़ नूं सोच नहीं पढ़ना, सोच दा मतलब है सोचना, सोच दा मतलब है विचारना, सोच सोच दा मतलब है जिवें आपां कहिंदे आ मैं तन पवित्र रखना है तन सुचा रखना है। सोच करे दिनस अर रात मन की मैल न तन ते जात। कहन लगे दिन पर रात बारो सुचा हुंदा यतन करदा रहे, बिंद बिंद हाथ धोंदा रहे, बारो तो बिलकुल पवित्रता रखण विच कामयाब दिसे। पर कहन लगे इस तरह करन दे नाल तेरे मन नू की असर पएगा। ठीक है लोकां दे सामने इन्नी को तेरी इमेज बन जाएगी, बड़ा पवित्र है, बड़ा सुचा रह के चल रहा है, ए बिल्कुल भी झूठ दे नेड़े तेड़े नहीं जांदा, ब्राह्मण वांग बड़ी सुचता है, बड़ी पवित्रता है। पर तेरी उस सुचता दा मुल तां ही पैंदा है जे मन सुचा होवे। अगर मन सुचा नहीं तो फिर इस बारी पवित्रता दा ते बारी सुच दा कोई मैना नहीं, कोई अर्थ नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबिया विच बहना चाहो ते लिबड़े तिबड़े आण के बह जाओ, तन साफ नहीं चाहिदा, ये मेरा मतलब नहीं है। जिहड़ी विखावे दी वाधू सोचे मैं उहदी गल कर रहा, जिहड़ी पखंड दे अंदर लेके चली जांदी उहदी गल कर रहा। हुणे आप श्री आसा जी दी वार दा कीर्तन सुन के हटे हो, पातशाह एक सलोक दे अंदर कह रहे सन गुरु नानक देव पातशाह के देके चौंका कड्डी कार, उपर आए बैठे कुड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, एहो अन्न असाडा फिटे, तन फिटे फेड़ करेन, मन झूठे चुली प्रेन। अखीर दे उते कहिंदे ने कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे तां सच पाईए। हुण एक बेनती मैं होर करां, जे कोई तुहाडे ते प्रश्न करे भी तुहाडा गुरु उत्ते ते गल करदे ने भी चौंका देना, गोबर दे नाल लेप करना, कार कढ़नी, लकड़ियां धो के बालनियां, ये पवित्रता इहदा खंडन कर रहे ने, ते अखीरली पंक्ति विच जाके कह रहे ने सुच होवे तां सच पाईए, तो फिर गल विरोधी लगेगी ना, भी अखीरली पंक्ति विच कह रहे ने सुच होएगी ते तां सच मिलेगा। पर प्यारियो इहदा थोड़ा जिहा विश्राम दा ही भरम है, विश्राम देना तुहानू आ गया ते अर्थ अपने आप साफ हो जाएगा। हजूर कहिंदे ने कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे तां, सुच हुंदी तां है सच पाईए, सुच बनदी तां है जे सच मिल जाए, सुच होवे तां सुच बनदी है अंदर दी, सच पाईए जे सच दे गुणा नू अपने हृदय विच वसा लवे। ते असीं की पढ़ के निकल जाने, सुच होवे तां सच पाईए। असीं एक विश्राम दे कारण अर्थां दे अंदर जमीन शमान दा फर्क खड़ा कर देने, सुच होवे तां सच पाईए। एक जगह ते मैनू गुरबाणी दा बोल होर भी चेते आउंदा है, पातशाह कहिंदे ने अंतर मैल गल मैं मन दी मैल ते तन दी मैल दी तुहाडे सामने रख रहा, क्योंकि फरीद साहब जी दा हुक्म अज इस तरह दा आया है। कहन लगे फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली होए जाए, मैं ते पग दे भरम विच रहा कि मैली ना होए, मत मैली होए जाए, गहला रूह ना जाने कि सिर भी मिट्टी खाए, मैं सिर भी मिट्टी ने खा जाना, मैं ते सिर ते बत्ती पग दा ही बड़ा ध्यान रखे, मन मैला हो जांदा है, इहदा ध्यान किसे नूं है, तन मैला ना होए इहदा ध्यान सानूं सारिआं नूं है। भगत कबीर साहब जी कहिंदे ने अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना, गुरबाणी दे बचन ने और कबीर साहब दी रचना दे बचन ने। हुण इन्हां बचना नूं सुनन तो बाद जे बंदे दे मन दा भरम ना जाए ते फिर ते खिमा चाहवांगा, महा अग्ञानता दे हनेरे विच ही इह खड़ा है, फिर ते इहनों ना गुरु दी आवाज सुनदी है ते ना किसे दूसरे दी। कह रहे ने अंतर मैल, अंदर तेरे होवे मैल, अंतर मैल जे तीर्थ नावे ते नौंदा फिरे 68 तीर्थां दे उते, अंतर मैल जे तीर्थ नावे तिस बैकुंठ ना जाना। कहन लगे इस तरह कम करन दे नाल मनुख नू बैकुंठ ताम नहीं मिलदा, परमात्मा दे चरण नहीं मिलदे। तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कशु ना होवे नाही राम एयाना, लोक पतीने, पतीने मैंने पतीज जाना, पतीज मैंने विश्वास करना, लोक तेनू चंगा कहन, इस गल दे नाल कबीर साहब कहिंदे ने फर्क नहीं पैना। लोक पतीने तू लोकां दे सामने विखावे दी सोच रखे, कहन लगे इहदे नाल फर्क नहीं पैना, क्यों नहीं पैना, कहन लगे नाही राम एयाना, परमात्मा न्याणा नहीं है कि जो तेनू अंदरों जानदा नहीं, ਉਹ ਸੁਗਣ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਖਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ ਵੇਖਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣਗੇ। ਲੋਕ ਪਤੀਨੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਹੀ ਰਾਮ ਇਆਨਾ। ਅਗਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ, ਮੱਜਣ ਮੈਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇਗਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਾਵੇ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇਰਾ ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਪਟ ਹੈ, ਮਕਾਰੀ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁਗਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਵੇਖਣਾ ਮਾੜਾ, ਸੋਚਣਾ ਮਾੜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੇਂਢਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਓਏ ਮੈਨੇ ਉਹ ਨਰ ਮੈਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਕਪਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਮੈਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਪਟ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਹਿਰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਣੀ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਦਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾ, ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ, ਕਾਇਆ ਮੰਜ ਸਕਾਉਣ ਗੁਣਾ, ਜੋ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਮਲਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਇਆ ਮੰਜਸ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਂਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਗੁਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਲਣਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਉਣ, ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਇਤਨੀ ਛੂਆ ਛੂਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੁੱਚਤਾ ਰੱਖ ਲਓਗੇ। ਸੁੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਿੰਜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਿੰਜ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ? ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾ ਹੁਕਮ रोक दिता गया कि तू तंबाकू सेवन नहीं करना। कारण सी उहदा, अज हर शराब की बोतल के उत्ते लिखा होया मिलदा है सेहत लई हानिकारक है। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने गुरु नानक साहब जी की पाक बाणी ने सानू हुक्म ला के रोक दिता तू इस पासे नहीं जाना। खिमा चाहवांगा बोल मेरे कुछ खुले ने। अच थां थां दे उत्ते मीडिया दे अंदर रौला है कि एड्स की बीमारी का इलाज केवल परहेज है, पर धन श्री गुरु नानक देव पातशाह ने बा हुक्म रोक दिता कि बस संग एक ही शरीर का चाहिए, बहुत शरीर का नहीं चाहिए, ताकि तू तन करके भी तंदुरुस्त रह, तन करके भी रोगी ना बने, तन करके तंदुरुस्त रह, इस तरह के नियम बनाए, मन करके तंदुरुस्त रह, गुरबाणी तेरी चोली विच पाई, गुरबाणी दे नाल जुड़। पर साडा सारा जोर बाहरी सोच दे उत्ते लग जांदा है, अंदर सोच बनदी है नहीं बनदी, इस पासे साडा ध्यान जांदा ही नहीं। ते मैं ते होर भी कई बार हैरान हुंदा, एक गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल जाना है ते इशनान करके जाओ, पर दूसरा गुरु ग्रंथ साहिब की गुरु ग्रंथ साहिब नहीं है, दूजे दे कोल जाना है ते कोई परवाह नहीं, भावे कोई तीन दिन का नाता है नहीं नाता, ओदे कोल रौल लाउन जाना है ते कोई बंदिश नहीं है, एक दे कोल रौल लाउन जाना है ते इशनान करना लाजमी है। कम से कम मर्यादा ते एक बना लो, या ते कहो करके जाना है, या कहो सवेर दा कीता काफी है, या कहो हर रौल ते करना काफी, एक मर्यादा ते एक घर दी कायम कर लो। एक घर दे अंदर भी एक मर्यादा नहीं, एक गुरुद्वारे दे अंदर भी एक मर्यादा नहीं है। खिमा चाहवांगा तो खैर गल मैं मैल दी कर रहा सा, तन दी मैल नालों मन दी मैल हजार गुणा बदतर है। मन दी मैल हजार गुणा बुरी है तन दी मैल नाल, मन दी मैल अति बुरी है, निरंकार दे घर दे अंदर प्रवेश करन ही नहीं देंदी। अगर किसे दे तन दे उत्ते पाए हुए कपड़े कालख दे नाल परे होन, मिट्टी कटे दे नाल चिकड़ दे नाल परे होन, या उदा तन चिकड़ दे नाल परया होए, कि आप उन्हों कुट के गलवकड़ी दे अंदर लै के मिलदे हो, अगला चिकड़ दे विचों निकल के आया होए तो की कुट के गलवकड़ी दे अंदर लै के उन्हों आप मिलदे हो, मिलना चाहुंदे हो, पर ये कहिंदे हो कि पहला सजना इशनान पान कर, अपने तन दे कपड़े उतार, तन दे कपड़े बदल, तन दे कपड़े साफ कर, तन साफ कर, ते तां उन्हों आपां अपनी गलवकड़ी विच लै के मान देने हो उस तो पहला नहीं। जे तन मैला है ते असी अपनी गलवकड़ी विच नहीं लैंदे, ऐलानिया कह देना चाहुंना जे मन मैला है ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गलवकड़ी दे विच भी नहीं आ पाओगे। गुरु ने वेखना है तेरा मन उज्जल है या नहीं है, पवित्र है या नहीं है। तन मैले वाले नूं असीं कोल नहीं बहन देंदे, मन मैले वाले नूं सतगुरु कोल किवें बिठाउणगे, सतगुरु दी गड़बकड़ी दा निग किवें पा सकेगा जिहदा मन ही मैला है। चलो मैं होर एक बेनती उदाहरण वजों करदा चला, दुनिया दे अंदर मां वास्ते सब तो अमोलक दात अमोलक चीज मां दे गर्भ विचों जन्म लैण वाला बच्चा है। बच्चा बालपन दी उम्र दे अंदर अपनी अनजानता दे कारण अपने ही मल मूत्र दे नाल अपने तन दे कपड़े नूं भर लवे ते मां दीआं अखां वेख लैन कि बच्चे दे तन दे कपड़े लबरेज हो गए ने, भर गए ने बच्चे दे मैले दे नाल, तो हुण मां लिबड़े तिबड़े बच्चे नूं इकदम चुक के अपनी छाती दा निक नहीं देंदी। पहला मां की काम करदी है, बच्चे नूं चुकदी है, उन्हों इशनान पान करवाउंदी है, तन दे कपड़े ला देंदी है, बदल देंदी है, दूजे कपड़े पवा के उन्हों साफ करके ते तां मां अपनी छाती दा निक देंदी है, उस तो पहला नहीं। हुण मन भी इस तरह ही, अगर मन भी लिबड़िया तिबड़िया है, मन मैला कुचैला है, ते गुरु दी छाती दा निक किवें पाओगे। मन पवित्र करोगे ते गुरु चरणा दे अंदर बहन दी जगह मिलेगी, वरना नहीं। तनासरी राग दे अंदर श्री गुरु नानक देव पातशाह दा एक बचन आउंदा है, कहन लगे दाग दोष लगे हुए कपड़िया दे उत्ते दाग, ते मन दे उत्ते दाग कादे लगदे ने मैलियां कर्मां दे, मन दे उत्ते दाग कादे लगदे ने मैलियां सोचां दे। हजूर गुरु नानक साहब जी कहिंदे ने दाग दोष मुंह चलिया लाए तेरे मुंह दे उत्ते बड़े दाग लगे ने, दोष ने, अपराध ने, पाप ने, तेरा मुंह कालख दे नाल भरिया है, कलंकित है। कह लगे दरगाह बैसन नाही जाए, जाए दा अर्थे जगह। कह लगे सच दे घर दे अंदर बहन वास्ते तेनू जगह नहीं मिलेगी। दरगाह बैसन, बैसन मैंने बहना, नाही जाए, जगह नहीं मिलेगी। उथे आना है ते पूरा पवित्र होके आ, अधूरा पन नहीं चाहिदा। जितना समा मनुखी मन दे अंदर पूरी पवित्रता नहीं आ जाती, उतना समा खुदा दे अंदर ये लीन नहीं हो सकता, दूर ही रहिंदा। इनू वार वार चांस मिलता रहेगा, जन्म मिलता रहेगा। ए जितना समा अपने आप नू पवित्र नहीं कर ले, उन्ना समा परमात्मा दे चरणा विच बहन दा समा नहीं मिलेगा। एक बेनती मैं इस संबंध अंदर होर भी करदा चलां। साडे तन दे उत्ते जिहड़े पाए हुए कपड़े ने, वह कपड़े मैले हो जाण, शरीर विचों निकलन वाली मैल या बाहरी गर्दो गुबार दे कारण तन दे कपड़े मैले होए, वह कपड़े असी ला के पत्नी दे अगे सुट देने, धो के साफ करके मैनू दे। अगर पत्नी नहीं है, मां दे अगे, भैन दे अगे, धी दे अगे या किसी दूसरे दे अगे कपड़े रख देने, कपड़े मेरे ने, धोण दा काम तू कर। बाहरी दुनिया दे अंदर ये दस्तूर चलदा है, कपड़े किसे दे ने, उन्हां नू साफ कोई दूसरा कर रहा है, धो कोई दूसरा रहा है। धर्म की दुनिया के अंदर मन के कपड़े नूं धोण वास्ते यह दस्तूर भी नहीं है। यह मन का कपड़ा मैला किया है, तुसी आप इनू धोना भी पैना है, तुहानू अपने आप में। यह मन का कपड़ा इस तरह का नहीं है कि इनू लाओ ते ला के किसी लौंडरी ते ले जाओ कि उत्थों मन धोआ के वापस ले आइए। कोई लौंडरी इस तरह की नहीं है। मन का कपड़ा इस तरह भी नहीं है कि इनू लाओ ते ला के मां भैन धी दे अगे रख दो कि कपड़े तू साफ कर। मन तुहाडा है, मैला तुसी कीता है, धोना भी तुहानू आप ही पएगा। हाँ एक गल जरूर है, तुसी अपने मन नू धोण वास्ते यतन करो थोड़ा, ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी तुहाडे ते रहमत करनगे बहुत ज्यादा। पर जे हिम्मत करोगे मन नू साफ करन दी तां, ते जे हिम्मत ही ना करो ते फिर गुरु की रहमत तो भी वांझे रह जावांगे। आप ही इनू धोना पैना है, आप ही असी इनू मैला कीता है। कुछ नुकते ने जो मैं तुहाडे चरणा विच बयान करन दा यतन कर रहा, इन्हां नू हिरदे दे अंदर वसाउण दा जरूर यतन करियो। जदों कोई अपने घर दा कूड़ा करकट इकट्ठा करके, झाड़ू पोचा करके, घर दे अंदरों कागज मिट्टी कट्टा इकट्ठा करके लफाफे विच पा के वह तुहाडे घर दे दरवाजे दे अगे रख जान, तो तुसी बर्दाश्त कर लोगे? दूसरे दे घर दा कूड़ा करकट पाया है उन्हें बैग दे अंदर, वो बैग सुट के चला गया एन तुहाडे दरवाजे दे अगे जिथों तुसी अंदर आना है या बाहर निकलना है, बिल्कुल मेन डोर दे सामने रख के, बर्दाश्त नहीं होगा। गरीब तो गरीब भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मन की सफाई करनी है ते इस तरह का ध्यान रखना पेगा। दूसरा कोई मेरे मन के घर के अंदर कूड़ा करकट सुटन का यतन तो नहीं कर रहा, कोई दूसरा मेरे कन्ना के अंदर चुगली सुटन का यतन कर रहा है, तो परहेज करो भी कूड़ा तेरा है, तू मेरे मन में सुटन का यतन क्यों कर रहा है। अगर कोई तुहाडे कन्ना विच निंदा दे बोल, काम दे बोल, बुराई दे परे बोल पा रहा है, ते गुरेज करो, परहेज करो, उन्हों कहो भी अपना कूड़ा करकट, अपनी बुराई अपने पास रख, तू अपने घर का कूड़ा मेरिया कन्ना दे राही मेरे मन दे घर विच सुटन का यतन क्यों कर रहा है। कूड़ा दूजे का हुंदा है, सानू मन की समझ नहीं, असी दूसरे का कूड़ा चोली फैला के प्रवान करी जाने। जे कोई दूसरा चुगली करता है दूजे की, असी हां विच हां मिलाने, कोई निंदा करता है हां विच हां मिलाने, ते बड़ा खुश होके दूजे की निंदा ते चुगली दे अंदर हिस्सा लेने, बड़ा खुश होके निम्मा निम्मा हसदे हुए भी नजर पैने दूसरे की चुगली सुन के, दूसरे की निंदा सुन के। पर यह नहीं जानते कि जो सुन रहे हो, जो सुना रहे हो, इन्हें ही तुहाडे जीवन की रुकावट बन जाना है, इन्हें जीवन के अंदर दीवार का काम करना, इन्हें तुहानू पार लगन नहीं देना। प्यारे हो इन्हां नुक्तियां नूं अपने जीवन दे अंदर अपनाओ अगर जीवन नूं रोशन करना चाहुंदे हो। गुरबाणी दा फरमान है मन मैले सब किछ मैला तन तोते मन हच्छा ना होए। कहन लगे तेरा मन मैला है ते एवें समझ लै कि सारा कुछ ही मैला है, तन नूं धोण दे नाल तेरा मन हच्छा नहीं होना। कबीर साहब बैठे सन खड्डी दे उत्ते कपड़े बुन रहे सन। कपड़े बुनना कबीर साहब जी दी करित है, कबीर साहब जी दा कम है, धंधा है, कपड़े बुन रहे ने खड्डे दे उत्ते बह के। निकलिया एक बिलकुल सुच दे नाल जुड़िया होया, बारी सुच दे नाल पखंड दे नाल जुड़िया होया कोलों ब्राह्मण। ब्राह्मण ने वेख्या कि कबीर साहब खड्डी बुन रहे ने और खड्डी दे नेड़े बह के उन्होंने लंगर छकना शुरू कर दिता। अचानक उसे समय किधरे चलते चलते माता लोई जी आ गए प्रशादा लेके घरों, ते कबीर साहब उत्थे ही हाथ धो के खड्डी दे कोल ही बह के प्रशादा छकना शुरू कर देंदे। उस पखंडी ब्राह्मण ने तनज भरे दो बोल गए कबीर साहब जी नूं मुखातब हो गए, क्योंकि सारा बनारस तकरीबन तकरीबन पखंडी ब्राह्मणा दे नाल भरिया सी। अगर बनारस दे अंदर संती होंदे ते गुरबाणी दे अंदर यह बोल कदी ना आउंदे कि गली जिन्ना जप मालिया लोटे हाथ निबग, कोई हर के संत ना आखिया बनारस के ठग। बनारस दे ठग मशहूर ने, बनारस दे संत मशहूर नहीं है, ठग मशहूर ने। निकले कोलों तनज भरे बोलां दे अंदर गल कह दिती। कहन लगा जिस बंदे नूं भोजन छकन दा नहीं पता कि किथे बह के खाना है, उहदा जीवन किन्ना को सुच्चा होएगा, उहदा जीवन किन्ना को पवित्र होएगा। कबीर साहब जी आखर बोल पै, कहन लगे माता झूठी पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे। आमे झूठे चाहे भी झूठे, झूठे है मरे अभागे। कहन लगे मां झूठी पिता झूठा, उन्हां दी औलाद उन्हां दे गर्भ विचों जन्म लैण वाली ओह भी झूठी। आ रहे ने झूठ दे नाल भरे, जा रहे ने झूठ दे नाल भरे, आउण जाण दा इह सिलसिला मुक्या ही नहीं। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, ठाओ मैंने जगह। पंडित जी दस दे ते जाओ कि सुची जगह केड़ी। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैस हो भोजन खाओ, जिथे बह के मैं भोजन खावा ये दसदा ते जा के जगह केड़ी है। मन नू पवित्र करन दे नाल निरंकार दी हजूरी दे अंदर प्रवेश की मिल जांदी है। तन नू पवित्र रखो जरूर, पर सारा जोर तन दे उत्ते ना दियो, सारा जोर मन दे उत्ते दियो। मन दी सफाई वल ध्यान दियो ताकि मन करके हजूर दी हजूरी दे अंदर प्रवान हो जाइए। पंडित निहाल सिंह जी बहुत आला कविता नू जन्म देंदे ने। उन्होंने मैल दे संबंध विच एक बोल लिखिया है। वो कहिंदे ने एक मनुख व्याया गया, उहदे घरवाली दा नां सी चंद्रमुखी। पुराने समय दे अंदर शरीर दे लक्षणा नू वेख के, सुहप्पन नू वेख के, नक्शो निगार नू वेख के नाम दे दिया करदे सन चंद्रमुखी। नाम सी चंद्रमुखी, ते पति चंद्रमुखी दी शोभा करदा, थकदा नहीं सी। चंद्रमुखी दे चेहरे नू वेख वेख के आनंद पाउंदा सी, ते इह गल कहिंदा सी चंद्रमुखी मैनू लगदा है तेरे वर्गा सुंदर मनुख दुनिया दे अंदर दूसरा नहीं है। पंडित निहाल सिंह जी लिखदे ने कि एक दिन चंद्रमुखी दे नक विचों मैल निकले। उन्हें हाथ दे नाल नक दी मैल नू साफ कीता, पर थोड़ी जी मैल उहदे चेहरे दे उत्ते उहदी गल दे उत्ते लग गई, थोड़ी जी मैल। उहदे पति ने गलानी कीती, नफरत कीती उस मैल नू वेख के। ते महाराज करदा रहिंदा अक्सर ही कि नफरत हुंदी मैल तों है। जे दूजे दी मैल दिस रही है दूजे तों नफरत है, जे अपनी मैल नजर आ जाए ते अपने तों भी नफरत है। दूजे तो नफरत करदे हो, जे कोई तुहानू पुछे भी क्यों, आपां अक्सर कह दिंदे आ इह बड़ा बुरा मनुख है। भई की बुरा है, उहदे हथ पैर बुरे ने, चेहन चक्कर बुरे ने, की बुरा है। आपां कह दिंदे आ नहीं उहदा सुभाअ चंगा नहीं है, सुभाअ बड़ा बुरा है, इहदी सोच बुरी, इहदा वेखणा बुरा, इहदा चलना बुरा, इहदा खाणा बुरा, इहदा मानसिक मंडल बुरा। दूसरे दी बुराई तों नफरत है, ते जे ओही बुराई अपने विच दिस पै तो की अपने नाल प्यार करोगे। पर शर्त यह है कि जे दिस जाए, पर दिसदी दूसरे की बुराई है, अपनी बुराई बंदे नूं दिसदी नहीं है। अपने वेखदा है जदों भी गुण वेखदा है, दूसरे की जदों भी वेखदा है बुराई वेखदा है, औगण वेखदा है। तो पति कहन लगा चंद्र मुखे पहला चेहरे की मैल साफ कर, तेरा चेहरा वेखण दे योग नहीं है। पति देव रोज कहिंदे सी मेरे नालों सुंदर कोई दूजा नहीं, अज की होया। पति कहन लगा चेहरे नूं जाके साफ कर, तेरे चेहरे दे उत्ते नक विचों निकली हुई मैल जम गई है। तो निहाल सिंह जी लिखते ने, हे मल मूत कसूत सबै पुन और सलेखन बांजन भारी, नाक की मैल जबै निकसै कर नाहे संभार सो पोच उतारी। कर दे नाल मैल करमे ने हाथ, कर दे नाल मैल साफ कीती है पर किधरे चेहरे दे उत्ते लगी रह गई है। आख्या कर नाहे संभार सो पोच उतारी, तो मुख चंद्र कहे जेह को तब नाहे निहार सकै वो नारी। ते अखीर दे उत्ते पंडित जी ने अपने वलों संदेश दिता, कहन लगे पिख रंचक, पिख मैंने वेख के, रंचक मैंने थोड़ी जी, पिख रंचक मैल गिलान करे सठ, सठ मैंने मूर्ख, सठ जानत नाही अहे के सारी। हे मूर्ख मनुख जानदा नहीं है कि तेरे अंदर इस तरह की मैल ही मैल भरी पई, तेरे नौ द्वारियां विचों मैल ही बाहर आ रही है। जितने नौ द्वारियां दे नाल ध्यान जोड़ के वेखो अंदर दी मैल बाहर आ रही है, पर वो शरीरक मैल है। मन दी मैल निरंकार नूं परवान नहीं, ते तन दी मैल सानू परवान नहीं। असी चाहुंदे आ तन साफ होवे, निरंकार चाहुंदे ने मन साफ होवे। तो अज दे इस महावाक दे अंदर भगत फरीद साहब जी दा प्रमाण, कहन लगे फरीदा मैं भुलावा पग दा, मैं इस भरम विच रहा कि पग मैली ना होए, मन मैला होए कोई डर नहीं, पग मैली ना होए, मत मैली होए जाए, बड़ा ध्यान रखे तन दे पाए हुए कपड़े मैले ना होन, पगड़ी मैली ना होए। गैला रूह ना जाने के सिर भी मिट्टी खाए, नहीं जानदा कि जिस मैल तो मिट्टी तो परहेज कर रहा है, एक दिन मिट्टी तेरे उत्ते आ जानी। मिट्टी पई है तोलवी कोई ना हो सीमित, मिट्टी तेरे उत्ते आ जाएगी, सिर नो भी निकल जाएगी, खा जाएगी। तो मैल तन दी ओ भी बुरी, मैल मन दी ओ भी बुरी। तन भी साफ चाहिदा है, पर तन मैला भी होवे काम चल जांदा है, पर मन मैला होवे ते काम नहीं चलदा। तन साफ किवें रखना है, पूरी कायनात नूं समझ आ गई है। मन साफ किवें रखना है, ये समझ केवल विरलियां विरलियां नूं, हजारां विचों विरलियां नूं मिली। कोई विरला धर्म दे मार्ग दे उत्ते चलण वाला मन दा परहेजगार है, तन दे परहेजगार सारे ही हैं। रस्ते दे अंदर मिट्टी घटा होवे, चिक्कड़ होवे, पानी होवे, असी सीधा तुर के नहीं निकलते, रस्ता वला के निकल जाने हैं। क्यों? सामने ते चिक्कड़ है, सामने चिक्कड़ होवे, चुगली होवे, निंदा होवे, ईर्षा होवे, दबैच होवे, असी मन नूं उहदे विचों गुजारदे हां, नहीं परहेज करदे कि इत्थों निकलन करके मन भी मैला होएगा। कबीर साहब ताई ते चेतावनी देंदे ने कि साकत संग न कीजिए दूरों जाइए पाप। मन नूं लैके इधर जाएगा साकत दे संग दे अंदर, ते मन तेरा अवच मैला होएगा। भगत फरीद साहब जी दे इस बचन नूं आधार बना के कुछ कहन दा निमाणा यतन कीता गया।
1: फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो मांजा दुध, सबे वस्तु मिठियां, रब ना पूजन तुद। फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावन मेरी भुख, जिन्ना खादी चोपड़ी,

निर्वतरी न पुछई तन्न सुहागन नाओ सवरे पेय कंत की कंत अगम्य था नानक सो सुहागनी जो पावे बेपरवाह सोहरे पेय कंत की कंत अगम्य था नानक सो सुहागनी जो पावे बेपरवाह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र अते निकी गोता आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनों आप रोज रोज श्रवण करते आ रहे हो लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दी पवित्र बाणी विचों। अज जो श्लोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए पहला श्लोक है अज ना सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पुछो डोहागनी तुम क्यों रहन बिहाए। पहला एक बेनती नु समझन दे यतन करो कि इस दुनिया दे अंदर औरत दा जामा ते भावे मर्द दा जामा है। जदों चर्चा परमात्मा दी चले उदों परमात्मा दे सामने आपां सारे नार दे रूप विच आ ते परमात्मा पति दे रूप विच है। इस जग में है पुरख एक है होर सगली नार सबाए। इत्थे जामे दा फर्क नहीं कि जामा औरत दा है जामा मर्द दा है। उपदेश ही कली औरत नूं है मर्द नूं उपदेश नहीं उपदेश सांझा है। गल परमात्मा दी चल रही है इस करके भगत फरीद साहब परमात्मा नूं कंत कहिंदे ने अपने आप नूं नार कहिंदे ने। वैसे भी तुहाडे ज्ञात लई मैं बेनती करदा चलां गुरबाणी नूं ध्यान दे के पढ़ो। गुरबाणी दे अंदर किधरे परमात्मा नूं मां किधरे पिता किधरे पुत्र किधरे भाई किधरे बंधु कह के बुलाया गया सत्कारिया गया। किधरे किधरे गुरबाणी दे अंदर परमात्मा नूं मालक ते स्वामी कहा गया गोपाल कहा गया। गुरबाणी दे अंदर परमात्मा दे संबंध विच कबीर साहब इस तरह भी कहिंदे ने कहे कबीर गुलाम घर का जी आए भावे मार। परमात्मा मैं तेरे दर दा गोला गुलाम हां और तेरी गिरफ्त विच हां हुण मर्जी तेरी है तू मैनू जिंदा रखे ता भला है तू मैनू मार देवे मेरा तावी कोई इतराज नहीं। उथे अपने आप नू गोला ते परमात्मा नू मालक मन रहे ने। सूफी संतां ने तकरीबन तकरीबन परमात्मा नू महबूब जानिया है और अपने आप नू महबूबा दी जगह दे उत्ते मन्निया है। तकरीबन सूफी संतां दा किरदार इस तरह दा है परमात्मा नू महबूब मन्नदे ने अपने आप नू महबूबा मन्नदे ने। तो जद परमात्मा महबूब है तो फिर लफज भी उस तरह दे वरतों विच लियाउणे पैणगे। भगत फरीद साहब जी ने लफज बयान किते अज न सुती कंत स्यों कंत मैंने परमात्मा कंत दा आखरी अर्थ वैसे हुंदा है पति ते साडा पति कौन है परमात्मा। अज मैं पति परमात्मा दा मलाप नहीं जानिया पति परमात्मा दे नेड़े नहीं हो सके। जीव स्त्री परमात्मा दे संबंध विच कह रही है अज मैं परमात्मा दी नेड़ता नूं मन करके नहीं पा सके। ते परमात्मा दे नेड़े तन ते हुंदा नहीं हुंदा ते मन परमात्मा दे मलाप दा आनंद मन नूं मिलना है।
मन ही परमात्मा पति दी शेज दे उत्ते जाएगा, तन दा जाना ही बड़ा मुश्किल। तन किवें लेके जाओगे, तन ने ते मर भी जाना है, मुक भी जाना है, तन बिरद भी हो जांदा है, तन सड़ भी जांदा है, तन भस्म भी हो जांदा। जाना मन ने है परमात्मा दे दर दे उत्ते। अज मेरा मन परमात्मा दे नाल नहीं जुड़ पाया, जोड़दा समय रोज रोज सुबह तो शाम तक परमात्मा दे नाल अल्लाह दे नाल अपने मन नूं। अज किसे कारण दे करके मेरा मन परमात्मा दे नाल नहीं जुड़िया, मैं परमात्मा दे नाल सौ नहीं सकिया। सौन दा मतलब है मिलना। अंग मुड़े मुड़ जाए, मेरे सारे शरीर दे अंदर बेचैनी है, मन दे अंदर बेचैनी है। ते बेचैनी किथे बनदी है? मन दे अंदर। मिलाप दा रस किथे बनदा है? मन दे अंदर। मिलन वाला कौन है? मन। अज मेरे मन दे अंदर बेचैनी है। बेचैनी किस गल दी है? क्योंकि जो परमात्मा रोज रोज मिलदा सी, उनू मिलन करके कोई ना कोई नवा रस जीवन दे अंदर रोज बनदा सी, नवा रस रोज पैदा हुंदा सी। अज परमात्मा दा मिलाप भी नहीं हो सकिया, किसे कारण मैं परमात्मा नू आराध नहीं सकिया। अज वो रस भी नहीं बनिया, ते रस नहीं बनिया ते मन दे अंदर चिड़चिड़ापन ते क्रोध दा जन्म होया। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜਾਗ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜ ਸਕਣ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਦਾ।

0: फिर ते किसे पाठ पूजा कथा कीर्तन भजन बंदगी दी लोड भी की है, क्योंकि मरना भी सारिया ने है ते दुख भी सारिया दा गलों लै जाना है मुक जाना है, फिर लोड की है तमाम चंगे कर्म करन दी, पाठ पूजा भगती दे राह ते चलन दी फिर की लोड है। तो खैर मैं अर्ज कर रहा सा मनुख दा जीवन चल रहा है किसे ना किसे रस दा बजा होया, हुण दूसरी बेनती रस भावे संसारी होवे ते रस भावे निरंकारी होवे, बड़े ध्यान नाल मेरी इस बेनती नूं समझण दी कृपा कर लियो। बेशक रस दुनियावी है ते बेशक रस धर्म दी दुनिया दे उत्ते चलदिआं चलदिआं मिलिआ है, रस रब्बी है या रस संसारी है आम दुनिया विचों मिलिआ। रस दी समझ ओनों ही हुंदी है जिन्ने रस नूं जाणिआ है, जिन्ने रस नूं चखिआ है, जिन्ने रस नूं चखिया नहीं उन्हों रस दी समझ पाएगी भी कि आप गुरुद्वारे आए हो, गुरुद्वारे दे अंदर चंगे चंगे खान वास्ते पदार्थ बन गए, लड्डू मठियाई जलेब बन गए, पकौड़े बन गए, दाल सब्जी बन गई, प्रशादा पूरियां बन गए, बड़ा कुछ बनिया, तुसीं इह प्रशादा छकिया तुहानू समझ पई कि प्रशादा स्वाद सी जां नहीं स्वाद सी, प्रशादे दा आनंद बड़ा लिया। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬੜਾ ਰਸ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੋ ਕੀ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਰਸ ਪਰੋਸ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? चलो मैं एक होर बेनती करा, खादा तुसी है रस नूं तुसी जानदे हो, जिन्हें सुनिया उन्हूं रस दे बारे समझ नहीं पई, हां वो सुन के गुरुद्वारे आ जाए लंगर छक लै ते उन्हूं समझ पै सकदी कला सुनन दे नाल नहीं। रब नूं जिन्हें जानिया रब दे नाल जुड़न दा रस उन्हूं ही मिलिया है, उन्हें चखिया है, उन्हें जानिया है। हां ये ठीक है कि जिन्हां ने रस नूं चखिया है ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਰਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੋਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਬੇਰਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰਸੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਸੀ ਸਮੈਲ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਮਗਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਰਸਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕ ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਮੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਭਗਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਣੇ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਦੂਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਦੁਨੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਭਗਤ ਹਾਰ ਗਏ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਗਤ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਜੇਤੂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਰਾ ਬਨਾਰਸ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਸ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਰਸ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗਾ ਹੈ, रस मिश्री वर्गा है, रस गुड़ वर्गा है, रस दुध वर्गा है, किस वर्गा रस है? परमात्मा दे रस दी ते कोई उदाहरण नहीं, वो अपनी उदाहरण आप है। भगत कबीर साहब जी दे उत्ते प्रश्न होया कि बोलो रस पाया है ते दसो, बोल के दसो रस किस तरह का है। ते हुण भगत जी उन्हां लोकां दे सामने चुप हो जांदे ने। अखीरी लोकां वल्लों बोछार करके प्रश्न आ रहे ने, धड़ा धड़ प्रश्न आ रहे ने, ते कबीर साहब अखीरी बोले ने, कहन लगे कहो कबीर गुंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कहिए। कहन लगे सजनो अगर एक गुंगे मनुख नू आप मठियाई खाण वास्ते दियो, चंगा स्वादला भोजन खाण वास्ते पेश करो, ते भोजन खवान तो बाद उदे उत्ते प्रश्न करो भी बोल के दस इहदा रस किस तरह का है। हुण उस भोजन का रस गुंगे नू आया ते है, ते आया भी जरूर, इहदे विच कोई शक नहीं, क्योंकि गुंगे दे चेहरे दे उत्ते जिहड़े खुशी दे चिन्ह प्रगट होए, उन्हां चिन्हां तो समझ आ रही है, निशानियां तो समझ आ रही है इहनू भोजन का रस मिलिया है। पर जे आप चाहो कि गुंगा मनुख जुबान दे नाल बोल के बयान करे कि रस किस तरह का होंदा है, ते गुंगे दे बस विच नहीं है। रब जी दे राह दे उत्ते चलदियां चलदियां जद कोई रब्बी रस दे नाल भरदा है, ते सच जानिया जे उहदे पास उस रस नू पेश करन लग्यां लफज रहिंदे नहीं है। अगर वह रस लफजां विच पेश हो जांदा है ते फिर उहने रस नू पाया ही नहीं है। मैं उदाहरण दित्ती सी लफजां दे अंदर ते खादे हुए भोजन दा रस परोस के तुसी दूजे दे सामने पेश करना चाहो नहीं हुंदा। आप किधरे दूर दराडे सैर सपाटा करन वास्ते चले जांदे हो, पिकनिक ते चले जांदे हो, कोई चंगी थां वेखदे हो, रमणीक जगह वेखदे हो, समुंदर दा किनारा है, सवेर दा समा है, घा दे उत्ते त्रेल पई नजर आ रही है, लहरां बणदियां मिटदियां नजर आ रही ने, सूरज दियां किरणां सुनहरी रंग दियां बड़ा मनमोहना जिहा दृश पैदा कर रही ने, ये सारा रस घूमण फिरन दा सूबा दा नजारा तुहानू मिलिया, वो नजारा लफजां दे राही परोस के आप अपने किसी सज्जन मित्र दे सामने बयान करना चाहो तो कि सज्जन नूं लफजां दे राही वह नजारा दिस जाएगा। जो रस तुसी पाया वह रस तुहाडे सुनन वाले श्रोते नूं आ जाएगा, नहीं मिलेगा। आम दुनियावी चीजां दा रस लफजां दे राही परोसिया नहीं जांदा, परमात्मा दा रस ते बिल्कुल ही नहीं परोसिया जांदा। परमात्मा जानन दा विशा है, परमात्मा नूं जिन्हें थोड़ा बहुत जानिया है उन्हें रस नूं मानिया है, जिन्हें नहीं जानिया उहदे अंदर ए प्रश्न ही पैदा हुंदा रहिंदा है, परमात्मा भी नहीं, परमात्मा दा रस भी नहीं, ये कहावतां ने, ये गल्लां ने, परमात्मा ग्रंथां दे सलोकां विच बंदे, परमात्मा नामी कोई चीज नहीं है। उहदे अंदर इस तरह के वलवले चलते ने, इस तरह के उत्तर प्रश्न उधेड़ गुण उहदे अंदर चलदे है। तो मैरज कर रहा सन लफजां दे पांडे विच परमात्मा दे रस नूं परोस के किसे दे सामने पेश करना बड़ा मुश्किल है। अगर परमात्मा ही एक लफजां दे बर्तन विच परोसिया जांदा है ते फिर परमात्मा साडे पांडे तो वड्डा नहीं है, साडे बर्तन तो वड्डा नहीं है। जो चीज मेरे पांडे विच आ गई वह पांडे तो वड्डी नहीं है, जो चीज मेरी खोपड़ी विच आ गई मेरी खोपड़ी तो वड्डी नहीं है, जो मेरे लफजां दे बोलन विच आ गया वह मेरे लफजां तो वड्डा किस तरह होया, जो मेरे समझन विच आ गया मेरी समझ तो वड्डा वह किस तरह होया, जो मेरे बोलन विच आ गया मेरे बोलां तो वड्डा वह किस तरह होया। परमात्मा बेअंत है, ना वह खोपड़ी दे प्याले विच आउंदा है मुकम्मल तौर ते समझ विच आउंदा है, ते ना उहदे मिलाप दा रस ही लफजां दे भांडे विच परोसिया जांदा है, उहदा रस भी बर्तन विच आउंदा नहीं है, समाउंदा नहीं है, परमात्मा बेअंत ही रह जांदा है। असीं उहनूं भांडे दे अंदर परोसण दा यतन करदे हां पर वेखदे हां कि बहुत सारा बर्तन तो बाहर ही पिया है, बेअंत पिया है, था पिया है। गुंगे मनुख दे कोल जुबान ते हुंदी है पर गुंगे मनुख दी जुबान दे कोल इह समर्था नहीं हुंदी कि उह लफजां दे उदेड़ गुण कर सके, लफजां नूं जन्म दे सके और लफजां दे राही किसे नूं कुछ समझा सके। परमात्मा दे राह दे उत्ते चलदा चलदा मनुख एक अवस्था दे अंदर पहुंच के गुंगे वाली हालात विच हो जांदा है, लोग पुछदे ने रब दे मलाप दा रस ते उहदे कोल परोसन दा कोई जरिया नहीं हुंदा, किवें पेश करे कि रस इस तरह दा है। लोग कह देंदे ने पागल है। इस तरह ही कबीर साहब दे नाल होया है। लोगों ने पुछया है कि बयान कर रस किस तरह दा है, ते कबीर साहब कहिंदे ने कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कही है। ते लोगों ने ताड़ी मार दी, झूठ बोलदा है, पागल है। लोग कहें कबीर बौराना, सारिया लोगों ने एक सुर होके कह दिता है कबीर बौरा है, कबीर पागल है, कबीर बौराना। पर कबीर साहब कहिंदे ने कबीर का मरम राम पहचाना। कबीर दे असली भेद नूं ते उहदा राम जानदा है, परमात्मा जानदा है। ये लोग की जानन कि मैनूं रस मिलिया है ते किस तरह दा मिलिया। गुरबाणी दे अंदर एक होर भी बचन आउंदा है, जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन ना जाए। जे मैं जान भी जावां परमात्मा तू इस तरह दा है ते आख्या नहीं जांदा। जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन ना जाए। तू मेरे कहन दे अंदर मेरे कथन दे अंदर आउंदा ही कदों है। जे मैं जान भी लेना कि परमात्मा तू इस तरह दा है, मेरे कहन कथन दे अंदर आउंदा ही कदों है। अज दा ये श्लोक भगत फरीद साहब जी ने जो बख्शिया कि अज न सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए। अज मैं परमात्मा दे नाल अपनी आत्मा नूं मिला नहीं सकिया, अज मैं मन नूं रब जी दे नेड़े कर नहीं सकिया। मैनू जो रस रोज रोज कंत परमात्मा दे नाल मिलन तो बाद मिलदा सी, सुरत नूं शब्द दे नाल जोड़न तो बाद मिलदा सी, अज ओ रस नहीं मिलिया। भगत फरीद साहब जी दे श्लोक दा सेंट्रल आइडिया केंद्री भाव इस तरह है। एक होर भी बेनती करदा चला, कदों महान रस मिलदा है, जदों छोटे रस वलीन हो जांदे ने, चले जांदे ने। या फिर इस तरह कह लो कि छोटे रस मिलदिया वड्डा रस मिलदिया छोटे रस अपने आप चले जांदे ने। बालपन दे अंदर हर बच्चा खड़ौणिया दे नाल खेडदा है, गुड़िया पटोलिया दे नाल खेडिया जांदा है। पर जद वो बाल बालपन दी उम्र नूं छड के जवानी दीआं दलहीजां दे उत्ते आण के खड़ा हुंदा है, तो की उदों वी उहनूं खड़ौणिया दी लोड़ पैंदी? सियाणप वधन दे नाल, उम्र दा तकाजा वधन दे नाल खड़ौणे अपने आप छुट जांदे ने, उहनां नूं छड्डण दी लोड़ नहीं पैंदी। अध्यात्मिक दुनिया दे अंदर, धर्म दे राह दे अंदर जिवें जिवें कोई वड्डा ते उचेरा रस मिलदा है, दुनियावी रस अपने आप छुटने शुरू हो जांदे ने, मदम पैने शुरू हो जांदे ने। अगर कोई कामी है, क्रोधी है, निंदक है, लोभी है, तरह तरह दे बुराई दे रस दे नाल भरिया है, ते वो ए गल कहिंदा है कि मैं रब्बी रस नूं भी पा लिया है, बिल्कुल कोरा झूठ बयान कर रहा है। या ते रब्बी रस है ते या फिर बुराइयां दा रस है। जिथे रब्बी रस आ जांदा है उथे बुराइयां दे रस नूं रहण वास्ते जगह मिलदी कदों है? इह ते अपने आप चले जांदे ने। इस तरह बेनती करां कि जे समझ होवे जो मेरे हाथ दे अंदर चीज फड़ी है एक कौडियां ने, ए भी समझ होवे जो मेरे सामने चमक दे रहा है एक कोही नूर हीरा है। कोही नूर हीरा हाथ दे अंदर आउंदिया कौडियां नूं छड्डदिया देर नहीं लगदी, अपने आप वो छुट जांदियां ने। वड्डी चीज दे मिलदिया छोटी चीज अपने आप छुट जांदी है, उहनूं छड्डण दी लोड़ नहीं पैंदी। पर ए समझ होवे कि ए वड्डी है ते ए छोटी है, इन्नी परख जरूर होवे, इन्नी समझ जरूर होवे। वड्डी लग्जरी कार दे मिलदिया छोटी कार अपने आप चली जांदी है, सीस मैल दे मिलदिया ही छोटा कार अपने आप चला जांदा है, चंगा कपड़ा मिलदिया ही खद्दर अपने आप चला जांदा है, चंगा भोजन मिलदिया ही सादा भोजन जवार बाजरा अपने आप चला जांदा है। पर समझ होवे कि इन्हां दोवां विचों चंगा केड़ा है, इन्हां दोवां विचों म्यार नीवां किहदा है, हौला केड़ा है। महान दे मिलदिया ही छोटा अपने आप वलीन हो जांदा है, चला जांदा है। अगर साडे मन दे अंदर काम क्रोध लोभ मोह निंदा चुगली दा रस है ते पूरी तरह भरिया है, ते खिमा चाहवांगा फिर रब्बी रस नूं अजे नहीं पाया। जिस दिन रब्बी रस दीआं बूंदां मिलणगीआं ए अपने आप ही जाने शुरू हो जाणगे, छुटने शुरू हो जाणगे। इहनां नूं कहण दी लोड़ नहीं कि तुसीं चले जाओ, छड्डण दी लोड़ नहीं, अपने आप छुट जाणगे। पर शर्त यह है कि इन्हां दी जगह दे उत्ते कोई ना कोई दूसरा आउणा चाहीदा है, और आना चाहिए महान आना चाहिए वड्डा तां इह राह छुट्टणगे। गरीब नवाज की बाणी का एक बचन मैं तुहाडे सामने रखदा चला। पातशाह कहिंदे ने रस सोइना रस रूपा कामन रस परमल की वास रस कोड़े रस शेजा मंदर रस मीठा रस मास। कहन लगे रस सोइना तू ते सोने नू अपने शरीर दे उते पा के इथों भी रस लै रहे कड़ा पाया मोटा लोकां नू विखा रहे कांटे पाए ने मोटे लोकां नू विखा रहे शिंगार तकरीबन तकरीबन लोकां नू विखाउण वास्ते रह गया। खिमा चाहवांगा शिंगार लोकां दी नुमाइश वास्ते रह गया। शिंगार हुंदा सी केवल पति दी खुशी वास्ते पर अज लोकां दी नुमाइश वास्ते पति दी खुशी वास्ते नहीं। खिमा चाहवांगा बोल मेरे कुछ इस तरह दे ने जो तू सोना अपने तन दे उत्ते गहनियां दे रूप विच हंडा के रस लै रहा है सोने विचों तेनू रस मिल रहा है रूपा चांदी विचों रस मिल रहा है कामन कामन मैंने औरत औरत विचों रस मिल रहा है रस रूपा रस सोइना रस रूपा कामन रस परमल की वास तू ते इथों भी रस लै रहा है कि थोड़ा जिहा परफ्यूम महंगा लैके अपने तन दे कपड़ियां दे उत्ते ला लिया है ते इहदे अंदर ही फुली जा रहे हैं अहंकार करी जा रहे हैं। परमल की वास किनू कहिंदे ने सुगंधी नू चंदन की महक नू। अगर तू महक का छुड़काव कर लिया है तू इन्ने दे अंदर ही अपने आप नू वड्डा समझ रहे हैं दूजे नू छोटा समझी जा रहे हैं। रस परमल की वास रस घोड़े कारा चंगियां तेरे कोल ने घोड़े चंगे तेरे कोल ने रस शेजा मंदर मंदर घर भी चंगा तेरे कोल ते घर दे अंदर शेज भी मखमली तेरे कोल। आखिया रस घोड़े रस शेजा मंदर रस मीठा रस मास ये सारे रस तेरे कोल ने इते रस शरीर के कह घट नाम नवास दस परमात्मा दे नाम दा रस तेरे अंदर नवास करे किथे टिके किथे। जिथे टिकना सी ओ जगह तू खाली कीती नहीं परे हुए बर्तन दे अंदर किसे नू कहिए होर पदार्थ पा होर भर किवें भरेगा तुहाडी थाली भोजन दे नाल पहला ही भरी पई है उपरों होर कौके दे विच पाई आ किथे अगला पाएगा। अगर पाएगा ते बाहर डुलेगा अंदर समाउण दी ते जगह है नहीं अंदर टिकन दी ते जगह है नहीं। इन्ने रस तेरे अंदर ने वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास पहला अपने अंदरों थोड़ा जिहा इन्हां रसां नूं विलीन कर इधरों नाल नाल रब्बी रस नूं लियाउण दा यतन कर इक दिन आएगा ये सारे रस चले जाणगे परमात्मा दा रस तेरे अंदर टिक जाएगा। दूसरी बेनती मैं एक संगत दे सामने होर करदा चला। लंगर दे अंदर तरह तरह दे स्वादिष्ट भोजन बने हुंदे ने लड्डू जलेब मठियाइयां मिठे दी गल मैं करनी उचेची मिठे दी। आप अपना पात्र लेके हथां दे अंदर थाल लेके अगे अगे वधदे तुरे जांदे हो। लंगर वरताउण वाला लंगर पाउण वाला तुहाडे पात्र दे अंदर तुहाडे बर्तन विच भोजन पाई जा रहा है। जिहड़ी चीज खाण वास्ते ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਲਲਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਰੋਗ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਲੇਬ ਪਏ ਨੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੋ ਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਦਸਤੂਰ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੁਗਲੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੋ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਚਲ ਹੋਏਗਾ ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਨਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਗਲ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਪਾਗਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਮਸਤਾਨੇ ਅੱਧ ਕਮਲੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭਰਾ ਵੀ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਬਣਦੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਰੋਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਰਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਰਸ ਲਓਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਓਗੇ। ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਰਸ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਰਸ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਰਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਜ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਰਸਾ, ਆਣ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ, ਦੂਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਆਣ, ਆਣ ਰਸਾ ਜੇਤੇ ਤੈ ਚਾਖੇ ਨਿਮਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਥੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ, ਆਣ ਰਸਾ ਜੇਤੇ ਤੈ ਚਾਖੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਮਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਖੇ ਲਾਥੇ, ਹਰ ਰਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚਾਖੇ ਸਾਧ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਜਾਣ, ਹਰ ਰਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚਾਖੇ ਸਾਧ, ਚਾਖਤ ਹੀ ਕੋਈ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਪੀਓ ਪਿਆਰੀ, ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਲੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਨੂੰ ਖੀਵਾ ਕਰ ਇਸ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਟੁਕੜਾ, ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਰਸ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਰਸ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਰਸ ਖੱਟਾ ਹੈ, ਰਸ ਲੂਣਾ ਹੈ, ਰਸ ਚਟਪਟਾ ਹੈ, ਰਸ ਨਮਕੀਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਰਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਅੱਜ ਤੇ ਰਸ ਬਣੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਅੱਜ ਤੇ ਰਸ ਬਣੇਗਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਵੀਕ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਰਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜੋ ਹੁਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਸ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵਕਤ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਸ ਖਾਧੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਰਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਇਹ ਰਸ ਹੁਣੇ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੱਢੋ, ਰਸ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਭੋਜਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸ ਬਣੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਹੁਣੇ ਰਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਰਸ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਰਸ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰੋ ਰਸ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। कीर्तन आप अज सुन रहे हो ते अज दे सुने हुए कीर्तन दा रस की कल नू जाके मिलेगा। कथा तुसी ऐस वक्त बह के दरबार वे सुन रहे हो ते की हुण दी कीती कथा दा रस आउन वाले तीन दिन बाद बनेगा। अगर तुहानू रस कथा विचों आ रहा है ते हुणे आ रहा है, नहीं आ रहा ते इहदा रस कल भी नहीं आएगा। अगर कीर्तन सुनदिया सुनदिया हुण रस नहीं बनिया, कल नू नहीं बनेगा। बाणी पढ़द्या पढ़द्या हुण रस नहीं बनिया, कल नहीं बनेगा। भजन बंदगी करद्या करद्या रस बनना चाहीदा है नालो नाल, नहीं बनिया ते फिर कदी भी नहीं बनेगा। अगर भोजन पक्का होवे, थाल दे अंदर परोसिया होवे, परपिया होवे साडे तों दूर, ते उस भोजन दा रस जुबान नू नहीं मिलदा। भावे ओह भोजन किन्ना सवादला होवे, किन्ना चंगा होवे, पर थाल विच परोसिया है, दूर पिया है, उहदा रस तुहानू की समझ आई कि भोजन खट्टा है, भोजन मिठा है, भोजन कौड़ा है, नहीं जान पाए उहदा रस की। भजन भी अगर मन तो दूर रहा, गुरबाणी मन तो दूर रही, कथा मन तो दूर रही, कीर्तन मन तो दूर रहा, ते दूर पै भोजन का रस भी नहीं मिलता, दूर पै भजन का रस भी नहीं मिलता। दोबारा मैं इन्हां लफ्जां नूं दोहरा दिया, भोजन जुबान तो, भोजन मुख तो दूर है, वह भोजन सदा कुछ सवारेगा नहीं जिहड़ा बाहर पिया है, उहदा रस बनेगा भी नहीं। जो गुरबाणी उपदेश साढ़े मन के बार बार है, मन विच ज्ञान है, ना मन नू तृप्त करेगा, ना रजाएगा, ना उहदा रस बनेगा, जो मन तो बार बार है। तो बेनती करदा चला, भगत फरीद साहब कहिंदे ने, अज ना सुती कंत सियो, अज मैं अपने कंत, कंत मैंने पति, पति मैंने परमात्मा, पति परमात्मा दे मलाप दा रस नहीं जान पाया। कुछ सत्संगी नवे आए, गल नूं मैं दोबारा दोहरा रहा, सूफी संत तकरीबन तकरीबन परमात्मा नूं महबूब मनदे ने, अपने आप नूं महबूबा मनदे ने, ते फिर लफज भी उस तरह दे वरतने पैणगे। जे परमात्मा प्रेमी है, अपने आप नूं प्रेमिका दी जगह दे उत्ते मन्या गया, ते फिर लफज भी उस तरह दी परोणे पैणगे। भगत जी कहन लगे, मैं अपने कंत परमात्मा दे नाल मिलन दा रस अज नहीं मान पाया, अंग मुड़े मुड़ जाए, मेरा सारा दिन मन बेचैनी विच रहा, चिड़चिड़ा पन रहा, क्रोध वार वार मन विचों जन्म लैंदा रहा, क्योंकि जो रस रोज रोज मिलदा सी अज ओह रस नहीं मिलिया। ते जिहड़े रोज रोज दे अभ्यासी ने, उहनां नूं मेरी बेनती दी पकड़ ज्यादा आएगी। वाकई मन खिजिया रहिंदा है अगर किसी दिन मजबूरी दे कारण गुरुद्वारे ना आ सको, रोज आउण वाले एक दिन ना आ सकन मन खिजिया रहिंदा है, रोज सुनन वाले एक दिन ना आ सकन मन विच क्रोध बनदा रहिंदा है, चिड़चिड़ापन रहिंदा है, इस तरह रहिंदा है जिवें कोई कीमती पदार्थ अज मेरे कोलों गवाच गया होवे, कोई वस्त गुम होई होवे। कहन लगे, जाए पुछो दोहागणी तुम क्यों रहन बिहाए, मैं उन्हां दुहागणा नूं साखतां नूं मन मुखां नूं पुछदा कि तुहाडी जीवन रूपी रात किवें गुजरदी, जिन्हां ने कदी रब नूं चेते कीता ही नहीं, भुल के जुबान दे उत्ते वाहिगुरु जाप लियांदा ही नहीं, परमात्मा दे गुणां दा जाप कीता ही नहीं, उन्हां दी जीवन दी रात किवें गुजरदी है, भारी गुजरदी है, बेचैनी विच गुजरदी है। एक तंदरुस्त मनुख ते एक बीमार मनुख, इन्हां दोवां दी रात दे अंदर वड्डा अंतर है। बीमार सारी रात करवटां बदलदा रहिंदा है, हौके भरदा रहिंदा है, जागदा रहिंदा है, बेचैनी विच रहिंदा है, ते तंदरुस्त लम्मियां तान के कूक नींदरा विच सुत्ता मगन नजर आउंदा है। इन्ना ही फर्क है एक गुरमुख दी रात ते एक मनमुख दी रात दे अंदर। रात जीवन है, पूरा जीवन एक रात है, एक रहन के पाहुण तो में आए, पूरा जीवन रात है। कईयां दा जीवन बीतदा है ते बीता है हौके पर्दियां झोरियां दे अंदर, कले कलेश दे अंदर, मन मुटाव दे अंदर। पदार्थ बड़ा है पर मन मुटाव भी बड़ा है। सुख देने वाले साधन पदार्थ ते बड़े ने, लग्जरी कारां ते कोल ने, सीस मेल ते कोल है, कपड़ा भी बड़ा है, भोजन भी बड़ा है, धन दौलत पदार्थ भी बड़ा है, पर नाल दुख भी बड़ा है। जीवन की रात बीती है दुख की पंड चुक है, ते कईयां दी जीवन दी रात बीतदी है बड़े आनंद दे अंदर। भावे उन्हां दा घर छोटा है, कार छोटी है, पदार्थ थोड़ा है, पर आनंदित बड़े ने, बड़े आनंद दे अंदर ने। एक बेनती मैं होर करदा चला, आनंद दे संबंध विच सुनिया ते है कि आनंद हुंदा है, पर आनंद नूं जानिया किन्निया ने है इहदा जवाब तुसी अपने कोलों आप मंगो कि आनंद नूं जानिया किन्निया ने है। बचपन दे अंदर असी खड़ौणियां विचों आनंद लभण दी कोशिश करदे रहे, खड़ौने मिल गए पर खड़ौणियां विचों आनंद ना मिलिया। मां बाप खड़ौने बदल बदल के देंदे रहे, किसे खड़ौने विचों भी आनंद ना बने। सिजे सिजे बालपन पिछे रह गया ते जवानी अगे आ गई, जवानी दियां दलहेजां ते कदम आ गए। जवानी दे अंदर मन विचों एक आवाज पैदा हुई, पत्नी मिल जाए ते शायद आनंद मिल जाए, पति मिल जाए ते शायद आनंद मिल जाए। जवानी दे अंदर पत्नी मिल गई पर आनंद ना मिलिया, पति भी मिल गया आनंद नहीं मिलिया। मन फिर हवा दी तरह जिवें गुब्बारे हुंदे ने ते गुब्बारे दी परत बड़ी पतली हुंदी, इस तरह बिल्कुल कमजोर गुब्बारे मन तैयार कर करके सानू देंदा रहिंदा है, दलीलां दे अंदर उलझाई रखदा है, अगे अगे दौड़ाई रखदा है। मन ने फिर एक आवाज दिती कि आनंद तां बनेगा जे तेरे घर दे अंदर एक दो बच्चियां दा जन्म होवे। घर दे अंदर दो धीआं दा, दो पुत्रां दा जन्म होया, चार पंज छे बच्चियां दा जन्म होया ते आनंद दा जन्म तां वी ना होया। मैं झूठ बयानी नहीं कर रहा, तुसी सारे इस गल तों जाणू कि विआह कराउण तों बाद आनंद बन जांदा है, धीआं पुत्रां नूं जन्म देण तों बाद किसी दे जीवन विच आनंद बणिआ। मैं ते कुरज दे कल्पदे होइआं नूं मिलिआ, कोई हजारां विचों इक आनंद भरपूर मिलदा है। चलो फिर मन दी वासना अगे चली गई, मन ने कहा कि हुण इह बच्चिआं नूं जन्म दित्ता है, इन्हां दी लालना पालना करना भी मेरा फर्ज है, इन्हां दी लालना पालना कर लेंगा ते शायद जीवन दे अंदर आनंद बन जाएगा। बच्चिआं नूं पालना पोसना शुरू कीता, पढ़ाउणा लिखाउणा शुरू कीता, सोचिआ कि चलो इन्हां दे कारज कर लवां, इन्हां दे विआह कारज कर लवां ते शायद जीवन दे अंदर आनंद बन जाए। बच्चे पढ़ लिख के डिग्री वाले बन गए, डिग्री होल्डर बन गए, कोई साइंटिस्ट बनिया, कोई डॉक्टर बनिया, कोई वकील बनिया, कोई जज बनिया, बच्चे ते पढ़ लिख गए पर जीवन दे अंदर आनंद अजे भी नहीं। बल्कि की होया, ओ जिहड़ी कल्पना सी ओ नाल नाल चलदी चलदी डिप्रैशन दा रूप धारण कर गए, कले कलेश डिप्रैशन दी बीमारी बन गए। इहनूं हिंदी दे अंदर फोबिया भी कह देंदे ने, फोबिया दी बीमारी बन गई। तो खैर जो मैं बेनती कर रहा सा, बच्चियां दे व्याह हो गए आनंद तां ना बनिया। हुण सारी कारज तेरे फते ने, धीआं व्याहियां गईआं, नौवां घर विच आ गईआं, पुत्र व्याहे गए परनाए गए, आप बजुर्ग वार जितने शोभा पा रहे हो, पहला मैं तुहाडे तों खिमा मंग लवां, बाद विच इमानदारी दे नाल अपने आप नूं पुछो कि तुहाडे जीवन दे अंदर आनंद बन गया। 100 साल दा बिरध बाबा मरण दी शेज दे उत्ते होवे ते कन्न विच जाके प्रश्न करो, बाबा ईमानदारी दे नाल दस के जाई कि आनंद लैके जा रहे हैं या दुख लैके जा रहे हैं। हजारां विचों इक दा जवाब आएगा, आनंद लैके जा रहे हैं। मरण दा मैनू कोई इतराज नहीं है, मैं जीवन गुजारा है, लालसा मेरी बाकी नहीं है, बाकी सब दी तमन्ना होएगी नहीं है। अजे ते जीवन होर चाहिदा सी, वेख्या ही की, वेखण दे दिन होण आए सन, सारी उम्र ते करदे ही रहे, वेखना ते होण सी। तो जीवन पूरे दा पूरा बीत जांदा है, ना बालपन दे अंदर, ना जवानी दे अंदर, ना बुढ़ापे दे अंदर आनंद बनदा है। हुण मैं जिहड़ी बेनती करनी चाहुंदा, आनंद नूं प्राप्त करन वास्ते कोई एक उम्र नहीं है। इह नहीं है कि बालपन दे अंदर जिवें खड़ौने मिलने ने, जवानी विच नहीं, जवानी विच ही विआह कारज हुंदा है, बालपन विच नहीं या बुढ़ापे विच नहीं। बुढ़ापे विच ही नौवां ते तीआं दो त्रिआं पोतरिआं वाला बनदा है, बालपन विच नहीं। इह ते होया ना उमर दा तकाजा कि किहड़ा कम किस उमर दे अंदर होना है, उमर दे लिहाज नाल होना है, पर आनंद उमर दे लिहाज नाल नहीं मिलदा। आनंद मिल जाए ते किसी नूं बालपन विच मिल जाए, मिल जाए किसी नूं जवानी विच मिल जाए, मिल जाए बुढ़ापे विच मिल जाए, ते ना मिले ते तिन्ने ही पैरे दे बीत जांदे ने, आनंद नूं मिलदा ही नहीं है, ना बालपन दे अंदर, ना जवानी दे अंदर, ते ना बुढ़ापे दे अंदर। भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने, जाए पुछो दोहागनी मैं उन्हां दोहागना नूं पुछदा प्रश्न करके तुम क्यों रहन बिहाए तुहाडे जीवन दी रात किस तरह बीती है दुब्बर रात पारी रात किस तरह बीती तुसी पूरे जीवन दे अंदर कदी वाहिगुरु मंत्र दा जाप कीता ही नहीं ते जद पूरा जीवन बीत गया कदी आप चौपाई पढ़ी नहीं सुखमणी साहब दे नाल जुड़िया नहीं पंज बाणियां दा नेम नपाया नहीं वाहिगुरु मंत्र जुबान ते लियांदा ही नहीं कदी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आया ही नहीं ते दुनिया दा दस्तूर वेख्या है जद ओह मरदा है डेड बॉडी नूं चुक के फिर ओदे कोल ग्रंथी सिंह नूं कह देंदे ने बा हुकम ज्ञानी जी एदे कोल बह के ना हुण लगातार तुसी सुखमणी साहब दा जाप करना है पूरा जीवन आप मिलिया सी सुखमणी दा जाप जपन ले पूरे जीवन दे अंदर ते पता नहीं के सुखमणी की हुंदी है ते मरण तो बाद हुण ग्रंथी सिंह दी सुखमणी इहनूं पार करेगी पूरे जीवन दे अंदर आप ते भुल के कदी इहने जुबान ते वाहिगुरु मंत्र दा जाप लियांदा नहीं ते मर गया ते हुण उहदे कोल बह के वाहिगुरु वाहिगुरु करो जी ओह इहनूं पार करेगा हुण दूसरे दा कीता इहनूं पार करेगा मेरा मतलब यह नहीं है कि ओदे कोल बह के रोना धोना ही चाहिदा है या कथा कीर्तन या बाणी दा जाप ना होवे होना चाहिदा है पर उन्हें आप भी ते जीवन विच कुछ कीता होवे ना मुक्ति उन्हों तां मिलेगी जे उन्हें आप कुछ कमाया है पहला मौत तो पहला पहला मन मुक्त होया है ते तां मरण तो बाद जुना तो मुक्ति ते मरण तो पहला पहला वह बंदरां दे अंदर बजा रहा है ते हुण मुक्ति उन्हों मिले किवें हुण वह बंदरां तो मुक्त होवे किवें तो भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने मैं उन्हां दोहागणां नूं मन मुखां नूं पुछदा कि उन्हां दा जीवन किवें बीतिया जिन्हां ने सारी उम्र दे अंदर कदी परमात्मा दे नाल अपने मन दी सांझ पाई नहीं इस श्लोक थोड़ा जिहा गहरा सी मैं श्लोक नूं लै के तां तुहाडी सेवा दे अंदर कुछ बेनतियां रखण दा नमाना यतन कीता कि अज न सुती कंत स्यो अंग मुड़े मुड़ जाए अगर बारी बारी अर्थ करोगे ते कुछ होर बनदे ने गहराई विच चले जाओ ते अर्थ सही रूप दे अंदर उगड़ के तुहाडे सामने आ जाणगे भगत फरीद साहब जी कहना की चाहुंदे ने अंग मुड़े मुड़ जाए मन विच बेचैनी रहिंदी उस मन विच जिहड़ा मन रोज रोज जुड़दा है पर एक दिन किसी मजबूरी दे कारण नहीं जुड़ पाया किसी कारण करके अज सांझ नहीं बनी परमात्मा दे नाल मन दे अंदर चिड़चिड़ापन रहा जाए पुछो दोहागनी तुम क्यों रहन बिहाए उन्हां दोहागना दा जीवन किन्ना दुखी होएगा किन्ना बजर ते भारा होएगा उन्हां दे जीवन दी रात किस तरह बीती है जिन्हां ने कदी पूरे जीवन रूपी रात दे अंदर परमात्मा पति नूं चेते नहीं कीता परमात्मा दे नाल सांझ बनाउण दा यतन ही नहीं कीता तो इह सी भगत फरीद साहब जी दे मुबारक बचन जिन्हां नूं आधार बना के कुछ बेनतियां आप संगत दे सन्मुख करन दा नमाना यतन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी रहमत करन सबना दे मना दे अंदर गुरमत ज्ञान दी बख्शिश और अज्ञानता दा हनेरा दूर करन दी कृपा करन
1: सहुरे ढोई ना लहै पीए नाही थाओ फिर वातड़ी ना पुछई तन सुहागन नाओ सोहरे पीए कंत की कंत अगम यथा नानक सो सुहागनी जो पावे बेपरवाह नानक सो सुहागनी जो पावे बेपरवाह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक अंतर गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सत्संगी जनो चल रही लड़ी वार कथा विचार आप रोज रोज श्रवण करते आ रहे हो। भगत फरीद साहब जी की मुबारक बाणी विचों अज जो श्लोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए सहुरे टोई ना लहै पेये ना ही थाओ। दो थावां दा जिक्र भगत फरीद साहब ने बाणी विच फरमाया, एक सौरा घर ते दूसरा पेका घर। कह लगे जिसनू सहुरे घर दे अंदर भी टोई ना मिले, टोई दा मतलब सहारा ना मिले, रहन वास्ते जगह ना मिले, पेके घर दे अंदर भी रहन वास्ते जगह ना मिले, वो जीव आत्मा आखर जाए किधर? क्योंकि बसियां जन्म लेंदियां ने, उम्र का कुछ हिस्सा गुजार देंदियां ने पेके घर दे अंदर, ते बाकी दा उम्र दा हिस्सा गुजारिया जांदा है सहुरे घर दे अंदर। जिदे पास पेका घर भी नहीं सहुरा घर भी नहीं तो फिर आखर वो जाए किथे? कहन लगे सहुरे टोई ना लहै। हुण इस रमज नूं थोड़ा जिहा समझण दा यतन करियो। सहुरा घर बयान कीता है परमात्मा दे घर नूं, पेका घर बयान कीता है ऐस लोक नूं। साडी आत्मा नूं इह लोक भी छड्डना पिया, पर लोक दे अंदर परमात्मा पति दा घर मिलिया ना, ते फिर वह आत्मा जाएगी किथे? इह शरीर आत्मा नूं छड्डना पैंदा है। असीं तीन चीजां दा सुमेल चल रहे हां, साडे पास तन है, साडे पास मन है, ते तीसरी साडे पास आत्मा है। तिन्हां चीजां दा सुमेल ही असीं चल रहे हां। चलो मैं आरंभ दे अंदर एक होर बेनती करदा चला। तन दा अपना फल, मन दा अपना फल, ते आत्मा दा अपना फल, वखो वखरे तिन्हां दे फल ने, और वखरियां वखरियां ही तिन्हां चीजां दीआं गुलामियां ने, वखरे वखरे बंधन ने। तन दे बंधन वखरे ने, मन दे बंधन वखरे ने, आत्मा दे बंधन वखरे ने, तिन्हां दे रोग वखो वखरे ने। खैर जो मैं बेनती कर रहा सा, साडा तन तन नू फल लगदा है औलाद पैदा करनी। तन कोलो तन ही पैदा हुंदा है, होर कुछ भी नहीं। धीआं दा जन्म हुंदा है, पुत्रां दा जन्म हुंदा है तन करके। मन नू फल मिलदा है ज्ञान दा, और जद मन नू ज्ञान दा फल मिल जांदा है, फिर इस तो अगे चल के आत्मा नू फल लगदा है रब्बी रस दा, परमात्मा दे रस दा। जिस मनुख दे मन नू ज्ञान दा फल नहीं मिलिया, उदी आत्मा नू रब्बी रस दा फल भी नहीं लगेगा। शरीर दे संबंध विच कोई प्रूफ पेश करना, कोई सबूत पेश करना कि शरीर हुंदा है, शरीर इस तरह दा हुंदा है, कोई लोड़ नहीं, क्योंकि शरीर अपना भी वेख रहे हैं, ते शरीर प्रकृति दे अंदर दूसरियां दा भी वेख रहे हैं। मन दे संबंध विच भी सबूत पेश करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि मन दे संबंध विच असीं रोज रोज गल करदे नजर आ रहे हैं। अज मेरा मन मनदा सी मैं कुछ खा लवां, मैं बना के खा लिया। मेरा मन करदा सी गुरुद्वारे चला जावां, ते मैं आ गया। मन करदा सी अज गुरुद्वारे नहीं जाना, ते मैं नहीं आया। मन करदा सी अमृत वेले उठा, मैं उठ पिया। मन करदा सी सुत्ता रवां, ना उठा, मैं नहीं उठिया। मन दी गल तुसीं वार वार करदे रहिंदे हो, मन दी चर्चा वार वार रसना दे उत्ते आउंदी रहिंदी है। तन दा सबूत पेश करन दी लोड़ नहीं, मन दा सबूत पेश करन दी लोड़ नहीं। मन महसूस करन दा विशा है, ते तन इन्हां दो अखां दे नाल वेखन दा विशा है। नंबर तीन दे उत्ते बचदी है आत्मा। आत्मा ना ते वेखन दा विशा है, इन्हां दो नेत्रां दे नाल आत्मा दिसदी नहीं है। आत्मा ना मन वांग महसूस करन दा विशा है, आत्मा है केवल विश्वास दा विशा। हुण इह महसूस भी नहीं हुंदी, इन्हां दो अखां दे नाल दिसदी भी नहीं। इह कारण है अजकल पढ़े लिखे लोकां दे जगत अंदर आत्मा तो विश्वास उठदा जा रहा है,
0: ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਤੇ ਜੇ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਗਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਿਆਨ ਯਾਫਤਾ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਖੈਰ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿੱਚਰ ਵਸੈ ਸੁਹੇਲੜੀ ਜਿੱਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਤਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲ। ਤਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਆਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਿੱਚਰ ਵਸੈ ਸੁਹੇਲੜੀ ਜਿੱਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਥੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਤਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਖਾਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਕਮਾਉਣਾ, ਵੇਖਣਾ, ਵਿਚਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਤਮਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਆਤਮਾ ਆਈ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਾਏਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਸਹੁਰੇ ਟੋਈ ਨਾ ਲਹੇ ਪਈਏ ਨਾ ਹੀ ਥਾਉ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਾਏਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਇਹ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਟਕੇਗੇ। ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਥੱਲੇ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਆਤਮਾ ਭਟਕੇਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਰੂਹ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭਟਕਣਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਬਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ, ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੰਤ ਜੂਨੀਆਂ ਤੇ ਅਨੰਤ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ ਅਨੇਕ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਕੱਟਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਨੇਕ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੂਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। तो मैं इतने लंबे समय तो पटकरिया से तेरे तो बड़ा दूर से, कदी पशु दा शरीर, कदी परिंदे दा शरीर, कदी नभचारी, कदी थलचारी, कदी पानी दे अंदर दा जीव पटकदा रहा। आत्मा मेरी शरीर बदलदी रही, जामे बदलदी रही, मैं पटकदा रहा। तो अज दे महावाक दे अंदर भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने सहुरे टोई ना लहे, रब दे घर दे अंदर तेनू सहारा नहीं मिलिया, क्योंकि उस तरह दा इस जन्म दे अंदर रह के तू कुछ कीता नहीं है कि रब जी दे दर दे उत्ते बहन दा योग बन जाए, उस बराबर बन जाए, योग बन जाए, उते यतन प्रयतन तू कीता नहीं है। रब ने एक बकायदा नियम बनाया है, सिस्टम बनाया है, उस प्रोसीजर विचों निकल के ही परमात्मा दा दर मिलता है, निकलन तो बगैर दर नहीं मिलता। और इस सिस्टम ही कल्ले परमात्मा ने नहीं बनाया, तुसी भी बनाया है, इस दुनिया दे अंदर भी है। अगर एक जज दी सीट खाली होवे, वैकेंसी निकले भी एक जज नियुक्त कीता जाना है, तुसी अपने अपनी एप्लीकेशन दे सकते हो, तुसी फार्म भर सकते हो, जज दी एक सीट खाली है। हुण जज दी सीट वास्ते कोई रिक्वायरमेंट भी तो होएगी ना, कि इहदी तालीम इन्नी चाहीदी है, पढ़िया लिखिया इन्ना चाहीदा है, इहनूं वकालत दा तजर्बा इन्ना चाहीदा है, कोई एप्लीकेशन भरे दूसरा नहीं। ते हुण जे कोई एक अनपढ़ बंदा, अंगूठा छाप बंदा जाके धरना दे कि मैं दूसरे नालों उच्चा लम्मा हां, सुंदर हां, सुनखा हां, जज दी सीट ते मैनूं क्यों नहीं बिठाउंदे, ते जज दी सीट ते बहन वास्ते बकायदा एक तालीम निर्धारित कीती गई, नियुक्त कीती गई। वो तालीम तेरे कोल होएगी तो बन जाएगा, नहीं होएगी नहीं बनेगा। बड़ी सादी जी उदाहरण, अगर उस सिस्टम विचों निकल रहा है ते तेनू कोई जज बनाउन वास्ते सोच सकता है, तू सिस्टम विचों निकलिया ही नहीं है, तालीम तेरे पास ही नहीं है, तजर्बा तेरे पास ही नहीं है, तेनू जज बनाएगा कौन। परमात्मा दे चरणा विच बैन वास्ते भी बकायदा एक नियम तैयार किया है परमात्मा ने, तेरा मन पवित्र होना चाहिदा है, तेरे मन दे अंदर द्वैत वैत नहीं होनी चाहिदी, ईर्षा निंदा चुगली आदि बुराइयां तेरे मन दे नेड़े तेड़े भी ना होन। काम क्रोध जह परसे नाहिन तेह घट ब्रह्म नवासा, काम क्रोध ते तेरे मन नू कदी छूया भी ना होवे, परसिया भी ना होवे। तो हुण अगर ते नियम साडे उते लागू हुंदे ने तां ते आत्मा परमात्मा दे देश दी वसनीक बन सकदी है, अगर ये नियम मेरे उत्ते लागू नहीं होंदे ते फिर आत्मा वसनीक नहीं बनेगी, फिर आत्मा भटकदी रहेगी, जूना दे अंदर भटकदी रहेगी। तो अज दे महावाक दे अंदर भगत फरीद साहब जी कहन लगे सहुरे टोई ना लहे। एक बेनती मैं इत्थे होर करदा चला, आखिर सहुरे घर नूं की दिक्कत है, परमात्मा नूं की दिक्कत है, वह साडी आत्मा नूं अपने घर दे अंदर जगह देंदा क्यों नहीं, परेशानी इहदे विच की है, दिक्कत कित्थे है। एक नियम है कि साडा संबंध जिउंदे शरीरां नाल, परमात्मा दा संबंध जिउंदियां रूहां ते जिउंदियां आत्मावां दे नाल है। किसी दा कोई परम मित्र होवे, या कोई मां बाप होवे, या कोई भैण भाई होवे, जां कोई पति पत्नी होवे, और बड़ा नेड़े दा रिश्ता भी ते दिल दी सांझ रखण वाला मित्र भी, उह शरीर करके चला जाए, चलाना कर जाए, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਰਗਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਖੱਡਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ, ਘਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਮਰਗਟ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਉਂਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰਗਟ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੜੀਆਂ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਉਂਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਮੁਰਦ ਘਾਟ ਨਾ ਬਣੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੁਰਦ ਘਾਟ ਨਾ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, मरी जमीर वाले नूं परमात्मा अपने घर दे अंदर पना क्यों देवे? उन्हें अपने घर नूं कोई शमशान घर बनाउणा है? जे तुसी राजी नहीं कि अपने घर नूं शमशान घर ना बनाईए तो परमात्मा भी राजी नहीं। वह कहिंदा मैं भी शमशान घर नहीं बनाउणा, मेरे कोल भी आ ते पूरा पवित्र होके आ, पूरा अपनी जमीर नूं जिंदा रख के आ अगर मेरे कोल आउणा है।

जिन श्रियात न सुवरिया पूरी कोई करामात आप सृजन हर तारिया सिखी अत संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारया अटल अथाह अतुल तू तेरा अंत ना पारावारया जिनी तू सेविया पाओ कर

सहज सुपाए दर्शन परसें गुरु कर जन्म मरण दुख जाए बेशुमार अथाह अगंत अतुल ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोले ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोले। परम सम्मान योग युगो युग अटल चवर शतर दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हाजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों हजूर की कृपा नाल आप जी

परम सम्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र हजूरी अंदर आप जी हफ्तावारी दीवान अंदर हाजरी भर रहे हो। आप जी नूं गुरमुखां ने बड़े प्यार दे नाल सतगुरु गुरु नानक साहिब जी दे पवित्र बचन कीर्तन विच सरवण कराए ने। सेवा करे सो चाकर होए जां हजूर दा वचन असी सरवण कीता, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए असी चंगे नहीं। ते साहिब कहिंदे ने संसार विच मैनू बुरा कोई नजर आउंदा नहीं। असल विच ए उस हिरदे दी आवाज है जिसने अपनी गिरवान विच झाती मारनी आरंभ कर दिती ते इको ही बिरती बना ली मन दी, मना तू लोकां दियां बुराइयां ना देख, तू अपने अंदर झाती मार के तक लै कि तू किन्ना कु गुनाहां नाल भरिया होए। साहिब बाबा नानक जी दे बचन सरवण कीते, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए परणवत नानक तारै सोए। आओ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी कृपा नाल जो आपां ने पिछले एतवार तो श्रीमान भाई साहिब भाई गुरदास उन्हां दी पावन पवित्र बाणी दे विचों एक पौड़ी नूं आधार बनाया सी कि गुरु के सिख दी निशानी की है, गुरसिखी की है। ते भाई साहिब होरां ने उस गुरसिखी दी तुलना पाणी दे नाल कीती ते उस दिन अर्ज कीती सी भाई साहिब दी पौड़ी कि धरती पैरां हेठ है, धरती हेठ वसंदा पाणी, पाणी चलै निवाण नूं निर्मल शीतल शुद्ध प्राणी, बहुरंगी इक रंग है सबना अंदर इको जानी, कहन लगे तत्ता होवै धुप विच ठंडे छावै ठंडा विरती खाणी, तपदा पर उपकार नूं ठंडे पर उपकार विहाणी, अग्न बुझाए तपत विच ते भाई साहिब कह रहे सन ठंडा होवै बिलमना आणी गुरसिखी दी एहो निशानी। इस पौड़ी दी विचार आपां आरंभ कीती सी, आओ उसे लड़ी नूं आपां अग्गे तोरने। आशीष आप साध संगत ने बख्शनी, कृपा धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने करनी। केवल विचार दा मंतव इना कुवे कि गुरु नानक साहिब तेरी उस सिक्खी नूं कदी आपां भी धारण कर लईए जिस गुरसिखी दी गल भाई साहिब भाई गुरदास होरां ने कीती। करो कृपा बड़े प्यार अदब नाल आशीष बख्शदिया होया गुरु की बख्शिश की फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहिब भाई गुरदास होरानी गुरसिखी की निशानी दे अंदर सब तो पहला इस गल का जिक्र किया कि धरती पैरां हेट है, जमीन ए धरती दी खाक मनुख दे पैरां थले वे, पशु दे पैरां थले वे, बनस्पति दे थले वे, इस दे उपर बेअंत जीव विचरदे पए ने। कहन लगे धरती विच किन्नी वड्डी निम्रता है, पर नाल कहन लगे जेड़ा पानी है ना ओ धरती तो भी निम्रता विच है कि धरती पैरां हेठ है, पर पानी किन्ना कु निम्रता विच चला गया धरती हेठ वसंदा पानी। ते उस दिन आपां विचार कीती सी पानी विच सब तो पहली गल निम्रता है ते गुरसिखी दी निशानी अंदर

जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक खुशी पी सच जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगुण हमारे

सकों देर अंत गुणिता कर कृपा मोहे नाम देखो नानक दर सरिता कर कृपा

है पी सच नानक होशी पी सच नारायण नरपत नमस्कार ऐसे गुर कौ बल बल जाइए आप मुक्त मोहि तारे ऐसे गुर कौ बल बल जाइए आप मुक्त मोहि तारे ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाव हो दिखम नदी जाए तरनी ना

उपावह दुबदे पत्थर तारे जियड़ा अग्न बराबर तपै भीतर वगै काती परणवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती परणवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती परम सम्मान योग शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों आप जी रात्रि वेले दे दीवान दी हाजरी भर रहे हो